रात को जी, हाय रात को जी, बोले पपीहारा भेद खोले, तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले, तेरा मेरा तेरा जी मैं।

स्वाहा तत्सवितुर्वरेण।

मर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी छोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी भोली।

0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया, और क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई

फूलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो। अरे हम तो हैं मन

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्रल्ला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्रल्ला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह
0: हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि खुशी शायद होठों तक सीमित है, चाहे शायद मेरी हंसी तक सीमित है, चाहे मैं जब बच्चों के साथ होता हूं तो जो खिलखिलाहट होती है वहीं तक सीमित है, लेकिन वो हंसी है, खिलखिलाहट है। खुशी मेरे अंदर की बात है, मेरे अंदर की वो फीलिंग है जो मैं खुद क्रिएट कर पाता हूँ। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि लगता था कि यही सब बातें जो बाहरी रीति से हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उसी पर खुशी निर्भर करती है, और निर्भरता बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस श्रृंखला में जहां हम बातें करने लगे हैं, वहां ये बात समझ में आती है कि ये मेरी अपनी अपनी क्वालिटी भी है और मेरी अपनी क्रिएशन है। मजेदार बात यह है कि उसे क्रिएट करने के लिए मुझे अपने थॉट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं संकल्प कर रहा हूं, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स आ रहे हैं या मैं उन्हें क्रिएट कर रहा हूं, ये भी एक नई वोकैबुलरी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जिनका हम रिकैप करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। मैं थॉट तक तो ले आई कि जब हमने उस फीलिंग को देखा कि खुशी कहाँ है, मैंने देखा कि ये सब में ढूंढ रहे थे, ये सब में समझा वो नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने आप को चेक किया तो वो खुशी मेरी अपनी क्रिएशन मुझे समझ में आई, और मेरा थॉट मेरी उस फीलिंग को क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव खुश वाला थॉट जो था वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, और ये जो इतना पावरफुल चीज है, इतनी शक्तिशाली वस्तु मेरे पास है, अनुभव कहें या कुछ भी कहें, एनर्जी कहें, वो कैसे क्रिएट होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो थॉट्स क्रिएट करती हैं?
1: हमने जैसे देखा कि परिस्थितियां आती हैं, लोग ऊपर नीचे कई बार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, एंड थिंग्स वर बिकमिंग चैलेंजिंग, अनप्रडिक्टेबल। यू नो, सडनली समबडी बिहेव्स इन अ वेरी अनप्रडिक्टेबल वे, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो कभी ना कभी ये एक थॉट चलना शुरू हुआ कि आखिर इस तरह से अगर जीवन चलती जाएगी तो देर इज जस्ट नो वे आई कैन बी हैप्पी। तो फिर हमने जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स हैं, सॉरी, चाहे वो एंग्जाइटी है, वरी है, उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यस, सिचुएशंस आर चैलेंजिंग, तो सिचुएशन पर थॉट डिपेंडेंट है, तो यस, हमेशा खुश रहना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमेशा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने वाली है। हमेशा रिश्तों में हर चीज मेरे अनुसार चले, ये नहीं होने वाला है। लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करें, ये नहीं होने वाला है। आप जैसा मैं सोचूं वैसा बिहेव करें, ये नहीं होने वाला है। सो इफ माई हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन वी रियलाइज्ड के सिचुएशन तो बाहर से आती, थॉट हम करते, और अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें और अपने आप को चेंज करना शुरू करें, हो सकता है हम उसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर सकते। पहली बात तो हैप्पीनेस क्या है, यू नो, दैट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क। वी रियली डोंट नो वट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम you know, बहुत ज्यादा कुछ उमंग उत्साह उस तरह की बात कर रहे हैं? हैप्पीनेस डजेंट मीन ऑलवेज दैट यू आर जम्पिंग अप एंड डाउन, लाइक दैट्स नॉट हैप्पीनेस। कहीं कुछ बात हो गई है, घर में कोई हादसा हो गया है, किसी कोई इलनेस है, somebody has left the body, तो देर इज नॉट क्वेश्चन, आप बोलोगे इस टाइम हाउ कैन आई बी हैप्पी? Yes, this time I cannot be happy, but can I be stable? That's very important. Or is it that pain and sorrow, ye natural hi hai, ye create karna hai? Kyunki jitna hum stable reh sakenge, utna hum us situation ko achhi tarah se cross kar sakenge. Aur stable rehne ke liye, mujhe us situation mein right kind of thought create karna padega. To humne dekha, jo thought hum create karenge, us quality ki fir hume फीलिंग्स जेनरेट होंगी, वो फिर हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर हमारी पर्सनालिटी बनती जाएगी, एंड देन माय डेस्टिनी। और थॉट्स पर इन्फ्लुएंस किसका होता, क्योंकि आज ये समझ में तो आ गया कि थॉट्स सब कुछ काम कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन थॉट्स को चेंज कैसे करूं? ये तो आदत ही पड़ गई है मुझे नेगेटिव सोचने की। तब वी सॉ लास्ट टाइम कि थॉट्स पर जो चीजों का इफेक्ट होता, वन इज इंफॉर्मेशन, वन इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड इज बिलीफ सिस्टम। हमारी जीवन में हम किन मान्यताओं के साथ, बिलीफ्स के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, एंड आई फील पर्सनली कि ये तीनों में से, इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ठीक है फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्या फीड करना क्या नहीं फीड करना. पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमने देखा कि हम बैठ कर उसके ऊपर वर्क करें तो वी कैन क्लीन इट ऑफ. लेकिन बिलीफ सिस्टम इज समथिंग दैट बचपन से शुरू होते होते एज आई वॉज ग्रोइंग मेरे अंदर बहुत गहरे डीप रूटेड है. एंड समटाइम्स आई डोंट इवन रियलाइज कि मेरे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं.
0: बिलीफ सिस्टम इन द सेंस कि बिलीफ सिस्टम बने कैसे, पूरा एनवायरनमेंट था मेरा क्या ऐसा है चीज़
1: बिलीफ सिस्टम बनाती है. इट कैन बी बिलीफ सिस्टम बनने के लिए भी इट कुड बी एनवायरनमेंट, इट कुड बी जो हमें सिखाया गया यू नो बचपन से. लेट्स से कि एज अ चाइल्ड मैंने ये देखा कि जब भी मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे डांटा गया है ना, या जब भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे पेरेंट्स के अनुसार राइट नहीं था तो मुझे डांटा गया. अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मैंने देखी कि दिस इज द वे, तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि जब भी कोई कुछ ऐसा करे
0: जो आपको पसंद ना
1: जो
0: हो,
1: आपको राइट ना लगे तो उसको चेंज करने का तरीका उसको डांटो. तो ये मैंने सीखा ना, इट्स नॉट दैट किसी ने मुझे सिखाया बैठकर, लेकिन मैंने वो सिनारियो से मैंने सबको अपने आसपास वो करते हुए मैंने वो बिलीफ सिस्टम बनाया दिस इज द वे इट वर्क्स. तो ये हम बिलीफ सिस्टम्स बनाते गए. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम औरों पर ब्लेम कर दें कि जो भी बिलीफ सिस्टम के लिए, हमें फिर अपने जीवन में आज स्टॉप करके चेक करके देखना पड़ेगा कि वो बिलीफ सिस्टम क्या रिजल्ट क्रिएट करता है. यू नो हर एक बिलीफ, यू नो इट्स लाइक अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर बहुत पावरफुल एक सिस्टम है जो हमारे पास है, तो एक कंप्यूटर को चलाने वाला जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम. उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास विंडोज है तो किसी के पास मैक है तो कुछ भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि सारे प्रोग्राम्स जो उस पर चलेंगे
0: वो कैसे चलेंगे.
1: तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, दिस इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा,
0: इसको तो बहुत सारी चीज, अब जैसे यही एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि दर्द के साथ रहना तो नेचुरल है.
1: एब्सोल्युटली ये एक नेचुरल है. आज टेंशन होना तो नेचुरल है. हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं,
0: कभी खुशी कभी गम, यस
1: ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है. विच इज ओके, नो वन इज टू चैलेंज माई बिलीफ सिस्टम, आई हैव टू चैलेंज इट माई सेल्फ. मुझे खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ है एक मान्यता है.
0: लेकिन बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस भी तो बन रहा होगा ना.
1: यस yes.
0: तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है, और उसको मैंने बिलीव, जैसे बचपन में भी मैं देखती आई जो, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव होते गए, अनुभवों को मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया.
1: तो अब सपोज मैंने बचपन में ये सीखा कि जब भी कोई गलती करे तो उसको गुस्सा करो, ठीक है, तो मैंने भी ये पकड़ लिया. या मैंने ये सीखा कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं ना तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब नहीं गुस्सा करते ना
0: तब मैं
1: तो मैं नहीं पढ़ती, तो मेरा अपना मस्ती चलती रहती है. लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने पढ़ा. तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाने का तरीका क्या है, उनको डांट दो ना वो काम कर देते हैं. नाउ आई टुक दिस बिलीफ सिस्टम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट इन माई लाइफ. तो चाहे वो मेरे ऑफिस में है चाहे वो मेरे घर पर है, आई एम वर्किंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि किसी से काम करवाना उनको डांट दो. काम भी हो रहा है लेकिन क्या मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका इफेक्ट होता है, क्या मेरे रिश्तों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है. एक तरफ से आई एम सेइंग मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हर एक कह रहा है मुझे खुशी चाहिए, दूसरी तरफ से मैंने बिलीफ सिस्टम बनाया कि गुस्से से काम होता है. हैप्पीनेस एंड एंगर ये दोनों कच्चे कैसे रहेंगे, हाउ विल इट हैपन. आज मुझे रोज काम करना है, रोज लोगों से काम करवाना है, एंड रोज मैं इसी बिलीफ सिस्टम से काम कर रही हूँ कि गुस्से से काम होता है, गुस्से से काम. तो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर गुस्से वाली, दिस एनर्जी गोज आउट एंड देन द सेम एनर्जी कम्स बैक. तो इतना गुस्सा क्रिएट कर कर करके सारा दिन, देन व्हाई एम आई सेइंग कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए.
0: काम तो होता गया ना, तो मैं तभी उसको यूज करूंगी ना जब काम नहीं हो रहा होगा.
1: राइट, तो आप काम करवाने के लिए उसको यूज कर रहे हो ना, लेकिन हमने कभी स्टॉप करके लाइफ में ये चेक करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए जीवन में. ठीक है, सपोज हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि गुस्से से काम होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि वंस आई वर्क विद दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए. अब रिजल्ट तो वो वाला नहीं आ रहा ना, रिजल्ट खुशी नहीं आ रही, गुस्सा बार बार करने के बाद खुशी रिजल्ट नहीं हो सकती. तो अगर वो रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन में अपनी जीवन को जीती हूँ. कि इंस्ट्रक्शन कुछ और फीड करते जा रहे हो और रिजल्ट

0: सारा कुछ उस पर बेस्ड होगा. सारा दिन में हमें पता भी नहीं चलता हम कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ काम करते
1: कभी
0: हैं.
1: तो हमें पूरा विंडोज खोलना पड़ेगा. वो इट्स अ बिग प्रोसेस एक्चुअली.
0: बट द थिंग इज के बिलीफ सिस्टम एंड वन इज द ट्रुथ. इज दिस द ट्रुथ? एंगर इज नेचुरल. ये एक बिलीफ है या ये एक सत्यता है? ये मुझे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ये जो बिलीफ सिस्टम्स, अगर हम एक भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ चले, सी द क्रिटिकल पार्ट क्या है. बिलीफ से थॉट क्रिएट होगा, थॉट से डेस्टिनी क्रिएट हो रही है. अगर मेरा एक भी बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा?
1: मेरी डेस्टिनी पर.
0: मेरी डेस्टिनी पर आएगा. एंड दैट्स वाई स्टॉपिंग एंड चेकिंग माई बिलीफ सिस्टम सारा दिन में. अगर आपके साथ कुछ भी बाहर, आप जो एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, कहीं आपको अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है, जस्ट हैव टू स्टॉप एंड चेक मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें काम कर रहा है. एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम उसी टाइम दिखाई दे देगा इमीडिएटली. आपको सिर्फ वो इक्वेशन बनाकर रखनी है अपनी लाइफ में. बिलीफ इज इक्वल टू थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी. बीच का भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ो उसको. दैट तो वो ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग. जैसे ही आपके अंदर कोई थॉट क्रिएट हुई, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बैठे हैं, अभी चार लोग आते हैं सामने, एंड वो चार लोग मेरे से नहीं बात करते, वो चार लोग ज्यादा आपके साथ ही बात करने लग जाते हैं. यू नो दे प्रेजिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू एंड आई एम नॉट फीलिंग नाइस. मुझे अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है ना, मुझे अगर फीलिंग के लेवल पर दिखाई देता, देन आई विल गो बैकवर्ड्स. आई विल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा. कौन सी वाली थॉट क्रिएट हो रही है इसके पीछे? क्या थॉट क्रिएट हो रही है? तो थॉट ये क्रिएट हो रही है, इज शी बेटर देन मी? इज इट दैट पीपल लाइक हर मोर? दिस काइंड ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग. और ये थॉट इज मेकिंग मी फील लो. अब इसके पीछे मुझे बिलीफ सिस्टम अपना चेक करना पड़ेगा. कौन से बिलीफ की वजह से मैंने ये थॉट क्रिएट किए? मेरा बिलीफ वो था कि जितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे उतना आई एम अ बेटर पर्सन.
1: ओ गॉड,
0: माय बीइंग गुड, वर्दी, नाइस, व्हाटएवर लेबल हमें लेना है.
1: आई थिंक यू सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम.
0: इट इज बेस्ड ऑन लोगों का अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इवैल्यूएट कर सकती. तो वो बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने वो चार लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए देखा, मैंने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इमिजिएटली द थॉट इज देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, शी इज अ बेटर पर्सन, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, पीपल डोंट लाइक मी. अभी उसके बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होगी?
1: और उसके साथ साथ और इसके साथ जुड़ी हुई और बाकी और गंदी गंदी फीलिंग्स भी आ सकती है. यू नो, ये एक्चुअली जेलेसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर.
0: यस, द जेलेसी के बेसिस पर स्टार्ट हुई.
1: तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी एंड यू.
0: इट हैज
1: एक्चुअली टू डू विद अ बिलीफ सिस्टम विच एक्चुअली अगर मेरे सामने आए तो मुझे कहेगा कि लोगों से क्या फर्क पड़ता है.
0: एब्सोल्युटली.
1: लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैंने फिट किया.
0: हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर हम उसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेक कर लेंगे कि कौन सा बिलीफ मेरा वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर यही बिलीफ वर्क हुआ कि जितना लोग जिसको अप्रिशिएट करते वो ज्यादा अच्छा है. एंड जहाँ ये लोग मेरे पास बात करने नहीं आए, मतलब आई एम नॉट गुड. नाउ दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. और ये डिस्टर्बेंस के कारण मैं जेलस फील करूंगी, फिर मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी. इट्स नथिंग टू डू विद यू एक्चुअली. आप बहुत जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फील करवाना है ना. अब इससे रिस्क ये होगा कि भले आपके सामने नहीं, लेकिन अपने आप को अच्छा फील करने के लिए मैं आपकी बुराइयां देखना शुरू कर दूंगी कि क्या है इसमें, क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पता ये एक्चुअली कैसी है, इनको कुछ मालूम, यू नो. एंड माय इंटेलेक्ट, माय माइंड विल स्टार्ट गोइंग एंड लुकिंग एट.
1: एंड यू नो, हियर दिस डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी. यू नो, आप दूर होते जाते हैं ऐसे ही.
0: अब जब मैं ये एनर्जी क्रिएट करूंगी तब एक्चुअली लोग मेरे से परे हटेंगे. एक्चुअली हटेंगे, क्योंकि मैंने कौन सी एनर्जी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, नेगेटिविटी की, जेलेसी की. फिर हो सकता है जब मुझे चांस मिले मैं उन्हीं चार लोगों के पास जाकर इनडायरेक्टली थोड़ी सी आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं. तो मैं उनको बोल दूंगी आपको क्या पता है कानुप्रिया के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम दे विल कम टू मी बिकॉज एंड नाउ आई एम एक्चुअली टेकिंग देम अवे फ्रॉम मी ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम. अब अगर उसी सीन में मैं अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करूं, आई एम हु आई एम, आई नो हु आई एम, आई एम नॉट परफेक्ट, आई नो दैट वेरी वेल कि मेरे अंदर अपनी कमजोरियां हैं,

0: अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन पर मुझे ही काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या किस बेसिस पर मेरे पास आते हैं, दैट डजंट मैटर। ये जर्नी मेरी अपनी है। तो मेरा आपके साथ जो कंपैरिजन करने की यात्रा होगी, दैट विल स्टॉप। हु आई एम इज बेस्ड ऑन हाउ आई नो माई सेल्फ, नॉट बेस्ड ऑन हाउ पीपल appreciate me or say to me, yes, ये natural है कि अगर आप एक अच्छी energy create करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो benchmark नहीं है। लोगों का आपके पास आना, लोगों का आपके साथ अच्छी तरह से बात करना, इसके पीछे बहुत सारे factors हो सकते हैं। It is definitely not necessary। आज के समय में we can see it। It is possible कि I don't like you और फिर भी मैं आपके पास आऊँ, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँ। एंड अगर आप उस बेसिस पर अपने आप को इवेल्युएट करेंगे तो वो तो बहुत रिस्की है। मुझे अपने आप को खुद इवेल्युएट करना आना चाहिए, बट फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज माई बिलीफ सिस्टम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है और मुझे अपने उस पर काम करना है, अपने कमजोरियों पर। लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। हाँ, लोग जो कहते हैं, आई कैन टेक दैट एज अ फीडबैक, बट जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क विद माई सेल्फ। तो एक एक बिलीफ सिस्टम मेरे थॉट पर एंड फिर मेरी डेस्टिनी पर काम करता है। और फिर हम कहते हैं, नहीं नहीं, इसमें मेरा क्या है, ये तो इनकी वजह से हुआ। It is totally
1: of course,
0: because of
1: you know, and what happens, and suddenly I realize that this is where the friendship starts, you know, soaring up.
0: वो तो destiny for the बिल्कुल, and it's not only about friendship. मैं कितने दर्द से गुजरने वाली हूँ अंदर, मेरे अंदर वो जो inferiority complex हमारे अंदर आ जाता है, क्यों आ जाता है, हम अपने आप को किसी के साथ compare करते हैं, ये भी तो एक belief system है। कॉम्पिटिशन
1: कि अगर मैं, मुझे अच्छा होने के लिए या मुझे जीतने के लिए किसी को तो हारना ही है। जिंदगी एक हार जीत है,
0: जिंदगी एक हार जीत है, बताओ ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना है।
1: जिंदगी इज, लाइफ इज अ वॉर,
0: लाइफ इज अ गेम।
1: यस,
0: लाइफ अगर गेम बोलेंगे, लाइफ इज अ गेम, तो इट ऑलवेज बी के देयर विल बी अ विनर एंड देयर विल ऑलवेज बी अ लूजर। अब अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलूं कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ गेम, इट्स अ वॉर, तो मैं सारा दिन क्या करूंगी औरों के साथ,
1: खेल खेलती रहूंगी ना, गेम खेलती रहूंगी।
0: यस, एंड सारा
1: और गेम खेलने में मैं जीत हार को देखती रहूंगी, कौन जीता कौन हारा।
0: एब्सोल्युटली। और जैसे ही अगर मुझे कहीं दिखाई दिया कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कुछ भी कर देना है आपसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आपको क्रिटिसाइज करके आपको नीचे गिराना है, मतलब आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मी गोइंग अहेड ऑफ यू। दिस इज अ बिलीफ सिस्टम। तो एक बिलीफ सिस्टम मेरे पूरे अंदर की सोच को, मेरी फीलिंग को सारा चेंज कर सकता है। एक बार तो रुक कर देखें, वेयर इज द कॉम्पिटिशन,
1: किस बात का कॉम्पिटिशन, नो कि मेरा जो ये थॉट क्रिएट हुआ है वो किस बिलीफ सिस्टम पे है।
0: स्टॉप करके देखना पड़ेगा, क्या इसके पीछे मेरे अंदर, दिस हैपन्स स्लोली, ऑब्वियसली वो एकदम से पहले दिन पर नहीं होगा, लेकिन कई बार जब भी आपके बिलीफ आपको ध्यान में आए, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, क्योंकि इतने सारे बिलीफ हमारे, इतने सारे बिलीव्स हैं कि सपोज मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए मुझे, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। अगर आपने नहीं अप्रिशिएट किया तो मुझे बुरा, क्यों, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, जब मैंने किसी के लिए कुछ किया तो अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए, प्रेज तो मिलना ही, इट्स सो नेचुरल।
1: सी, इट इज नेचुरल, मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट, एटलीस्ट अप्रिशिएट।
0: सी नाउ, जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं, हमें इमीडिएटली पता चल जाता है, नहीं मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहती थी। या बिलीफ सिस्टम, अगर मैंने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी तो रिटर्न में अच्छा ही करोगे, बिलीफ सिस्टम है
1: तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा करेगा।
0: क्या जरूरी है आज के वो अच्छा करेगा?
1: हाँ, वो किस थॉट प्रोसेस में, और अच्छा, और अच्छा क्या,
0: और
1: क्या,
0: अच्छा और बुरा तो मेरे रेफरेंस पॉइंट से है ना, अच्छा और बुरा आपके रेफरेंस पॉइंट से तो है ही नहीं, आप अपने अनुसार तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो वैसे भी, लेकिन मेरा बेंचमार्क वो
1: ये बना रखा मैंने, ओह यस, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आती हूँ, मैं आप जब बीमार हो जाते हो मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ, मैं बीमार होकर पूछा तक नहीं आप
0: ना से, फिर थॉट कौन से क्रिएट हुई, फीलिंग कौन से क्रिएट हुई, अगली बार मैं नहीं करूंगी आपके लिए। डेस्टिनी, दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग। नेक्स्ट वी चेंज आवर बिलीफ सिस्टम एंड वी से, मैं वो करूंगी जो करते हुए
1: मुझे अच्छा
0: लगता है, नॉट मैं वो करूंगी ताकि इन रिटर्न आप करेंगे, क्योंकि उस बिलीफ सिस्टम से मुझे क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला,
1: हर पेन, यस रिजेक्शन पेन अननेसेसरीली, यू नो, एंड देन वी स्टार्ट प्रेशराइजिंग द अदर पर्सन आल्सो,
0: एब्सोल्युटली,
1: यू नो, वी स्टार्ट एक्सपेक्ट, यही एक्सपेक्टेशंस आने लगती हैं फिर,
0: मैंने आपके लिए इतना किया, हाँ. आपने मेरे लिए क्या किया, या मैंने आपके लिए इतना पूरी जीवन मैंने आपके लिए ही किया, आपने क्या किया. तो ये बिलीफ सिस्टम्स की चेकिंग क्यों जरूरी है, बिलीफ सिस्टम्स को धीरे धीरे चेंज करते जाएं और वो वाले बिलीफ सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें जो हमारे जीवन को स्मूथ, इजी एंड हैप्पीनेस हम क्रिएट कर सकते हैं. इफ आई कैन चेंज माय बिलीफ सिस्टम एंड आई कैन से आई विल डू व्हाट आई वांट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. Is it possible to leave?
1: Saying it is easy.
0: So doing will come with practice, na? Yeah. You know, see,
1: again, this pain. Again, this is what I'm saying. कि बार बार हम जो बात कर रहे हैं happiness index. अगर मैंने कुछ किया हुआ है किसी के लिए और वो वापस या मेरी जब सिचुएशन आई तो उसने वैसे नहीं रिएक्ट किया या नहीं किया तो वो जो पेन है उसमें मैं उस वक्त तो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकती,
0: नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो प्रोग्रामिंग अपनी कर ली थी कि मैंने आपके लिए किया
1: तो मुझे आपको करना
0: है, आपको करना ही है. यू सी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जिसके लिए मैं अच्छा करूंगी उसको मेरे लिए अच्छा करना ही है. जैसे ही वो अगर नहीं करते हैं या वो उस तरह से नहीं कर, सी एवरी वन इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. हो सकता है आपकी नेचर है कि आप बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब आप डिनर होस्ट करेंगे तो आप इतना कुछ कर देंगे, आप गिफ्ट देंगे तो इतने देंगे, आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं. हो सकता है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. मेरे लिए आप घर पर आओगे तो मैं पूछूंगी आप चाय पियोगे क्या, एंड यू विल से लाइक आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो पूरा डिनर आपके लिए बनाया था और आप मुझे पूछ रहे हैं चाय पियोगे कि नहीं पियोगे. यू आर हर्ट, यू डोंट फील एनीथिंग फॉर मी.
1: आई एम बैडली हर्ट, यू नो, वी गेट हर्ट.
0: नाउ दिस इज, वी आर टॉकिंग ऑन फिजिकल थिंग्स, एंड यही सेम चीज
1: सटल
0: इमोशनल लेवल पर भी वर्क होती कि जितना मैं आपके लिए कर रही हूँ, मेरा ये बिलीफ होता है आप भी उसी प्रपोर्शन में मेरे लिए करेंगे. ये बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है और यहाँ कहीं ना कहीं फिर हम
1: और ये हम जस्टिफाइड, सी वी से दैट दिस इज राइट, इट शुड बी लाइक दिस, बट देन वी हैव टू चेक कि वो मुझे पेन दे रहा है, इट मींस इट्स नॉट राइट.
0: दैट्स बिकॉज़ या दैट बिलीफ सिस्टम इज डेफिनेटली नॉट राइट, क्योंकि हरेक का पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हरेक का सोचना, हरेक का करना, इट्स नॉट दैट दे आर रॉन्ग, वो बैड है, लेकिन उनका राइट एंड रॉन्ग डिफरेंट है. आप जितना करते हो मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि आपने ये बिलीफ बनाया था कि मैं उतनी ही कैपेसिटी में करूंगी, आप हर्ट हुए जब मैं नहीं करती. अब आप अपने बिलीफ को अगर थोड़ा सा चेंज करो कि मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करते हुए मुझे अच्छा लगता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग टू मच इन रिटर्न. यहां तक के लाइक वंस आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे रिटर्न में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट लाइक डूइंग इट, तो मैं कर रही हूँ. लेकिन होता ऐसे कई बार कि वो अच्छा तो कुछ नहीं किया रिटर्न में, लेकिन किसी ने हो सकता है कि एकदम
1: धोखा दे,
0: कुछ गलत कर दिया कुछ बहुत, एंड आई फेल्ट हर्ट, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा, एंड देन आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये भी तो एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक्सपेक्ट, हम ये सोच रही थी, मैं वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, मैं ये सोच रही थी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मेरे को करने दो, मुझे करते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने बुरा कर दिया, तो दैट ऑल्सो यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशन,
1: एटलीस्ट आप कुछ मत करते.
0: सो मैंने वो बिलीफ बनाया था कि मैं अच्छा करूंगी, आप कुछ मत करना, लेकिन आपने जो मैंने सोचा, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरे ऊपर कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ गया, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन था. तो इफ आई कैन चेंज माई बिलीफ सिस्टम टू मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगता है,
1: विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और विदाउट एनी थिंग्स,
0: यू नो हाउ सिंपल माई लाइफ विल बिकम.
1: ओ यस, बट राइट नाउ तो आई एम रियलाइजिंग हाउ मच वी नीड टू डू, इन द सेंस दैट हाउ मच वी नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो इट्स अ मेजर मेजर शिफ्ट की वन रियलाइजिंग कि जहां मुझे बुरा लगने शुरू हो उस समय हमें रुक जाना चाहिए. एक्चुअली वी शुड नॉट ट्राई टू मूव अहेड, वी शुड लुक एट कि कौन सा बिलीफ सिस्टम है जिसने मेरा ये थॉट क्रिएट किया. अगर आपके पास कोई मन में सवाल उठता है, कोई बात अभी लग रहा है कि इससे जुड़ी हुई है, तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ड्रामा कुमारी में आज एक बहुत मेजर नया बिलीफ सिस्टम हमने किया है कि जितने भी जो भी नेगेटिविटी मुझे होती है उसके पीछे कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है जिसे चेंज किया जा सकता है. वो चेंज कैसे होगा वो हम अगली कड़ी में जानेंगे. लेकिन अभी सिस्टर शिवानी, आज एक बहुत मेजर हमें अगेन हम कहेंगे एक चाबी है, एक कुंजी है, एक की है टू एक्चुअली सॉल्व द यू नो इट्स की टू हैप्पीनेस बेसिकली. सो लेट्स रिफ्लेक्ट फॉर सम टाइम एंड सी हाउ इट वर्क्स विद अस.
0: कंफर्टेबल होकर बैठे, वी नॉट डूइंग एनीथिंग अननेचुरल. अपने आप को ही देखने की कोशिश करते हैं. बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर जीवन चलता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में अपने अनुभवों को देखते, अगर वो अनुभव, वो फीलिंग्स कंफर्टेबल नहीं लगती, तो अपनी मान्यताओं को चेक करो. वो बिलीफ्स जो हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन ट्रुथ is always comfortable. Truth will always make me feel peaceful. Somewhere there is a confusion. Happiness is natural. Happiness is unconditional. Happiness is my creation. Meri khushi मेरी अपनी रचना है. ये किसी पर भी आधारित नहीं है. ये मेरे हाथ में है. आज इस बिलीफ को लेते और सारा दिन की यात्रा पर चलते हैं और चेक करते क्या अनुभव होता है. ओम शांति.
1: ओम शांति. जिस तरह से साइलेंस में बैठकर हमने अपने सबकॉन्शियस को, आपने पहले भी कहा था कुछ कुछ बीज बोने की जरूरत है, तो आज साइलेंस में बैठकर अपने साथ इस एक बिलीफ सिस्टम को डालने की कोशिश की है और ये प्रयास संभव रहेगा कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी वैल्यू है एंड आई कैन बी हैप्पी एनी टाइम आई वॉन्ट. इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि इस श्रृंखला में जो जो हम सीख रहे हैं उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. ओम शांति.

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनका ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान भी करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु का अर्थ है गो अर्थात अंधकार या अज्ञान, और रा का अर्थ प्रकाश, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर गुरु महिमा का गीत आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की, तो आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनियों को शिक्षा के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित एक परंपरा है।

0: जिन्होंने कर्मयोग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रभुत्व करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्च के अपने बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार किया था। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में भी विशेष तौर पर मनाया जाता है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुरु की पूजा का विधान होता है। ऐसा प्राचीन काल से कहा जाता है कि इस दिन से चार महीने तक गुरु तथा साधु संत एक ही स्थान पर बैठकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये चार महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए ये बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। तो आप सुना है गुरु पूर्णिमा पर स्पेशल एपिसोड। आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर आपसे जुड़ूंगा गुरु पूर्णिमा की कुछ बातें लेकर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: गुरु

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार गुरु पूर्णिमा की बातें चल रही है। जैसे सूर्य के तप से तप्त भूमि को शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु के चरणों में उपस्थित शिष्य व साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। साथियों, ऐसा संसार में कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ये ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। गुरु की महिमा न्यारी है, गुरु की ज्ञान की ज्योति जला, गुरु ही ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं, परंतु गुरु हमें जीने की कला सिखाते हैं, इसलिए इनका महत्व और बढ़ जाता है। एक बात और यहाँ कि जैसे हमारे रिश्ते नाते व घराने होते हैं, वैसे ही हमारे गुरु का भी घराना होता है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा होती थी, तो गुरु का एक कुल यानी कि उसके शिष्य या शिष्याएं होते हैं, इसीलिए गुरु भाई व बहन कहा जाता है, गुरु बहन भी कहा जाता है। इसी प्रकार संगीत में भी गुरुओं के घराने उसमें भी चलते हैं, उनसे सीखने वालों को गुरु भाई या गुरु बहन ही बोला जाता है। तो ये परंपरा पवित्रता की होती है जो हमारी प्राचीन काल से चलती आ रही है, क्योंकि पवित्रता की वातावरण में रहकर ही शिष्य अपनी उन्नति व शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ना कमाल की बात। आप सुनाए हैं वीडियो मधुबन पर विशेष गुरु पूर्णिमा की बात। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आइए फिर से एक बार स्वागत है आपका गुरु पूर्णिमा पर स्पेशल एपिसोड आपके लिए। साथियों, मैं बात कर रहा था कि गुरु की सानिध्य में रहकर कैसे शिष्य जो है ज्ञान प्राप्त करता है, ये परंपरा चली आ रही है। इसलिए प्राचीन काल में भी ब्रह्मचर्य में रहकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता था। अपने गुरु के सानिध्य में वो शिक्षा के साथ साथ सफल जीवन जीने की कला भी सीखता था। इस दिन अपने गुरु को सम्मान देने का दिन होता है तो शिष्य अपने गुरु के लिए फल, मिठाई व उपहार देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा संगीत के शिक्षक गुरु इस दिन अपने शिष्यों को तिलक करके उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। साथ ही रोज संगीत अभ्यास करने की प्रतिज्ञा भी शिष्यों से करवाते हैं, क्योंकि अभ्यास करने से ही वह स्वयं का व गुरु का नाम कर सकते हैं। वह अपने जीवन में उनकी दी गई शिक्षा को सफल कर सकते हैं। साथियों, अगर हम देखें कि जैसे कि शुरू में भी हमने बताया था कि आदि गुरु परमेश्वर शिव ने साधु संतों को, ऋषि मुनियों को ज्ञान बताया था, तो ये सत्य है कि एकमात्र शिव परमात्मा ही हमारा सच्चा गुरु होता है। वही हमें सत्य के मार्ग पर चलाता है तथा हमारा अज्ञान अंधकार दूर करता है। हमें ये ज्ञान देखकर कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अभी तक तो हम अंधेरे में ही जी रहे थे, लेकिन गुरु शिव के मिलते ही हमारे जीवन में सारे अंधकार दूर हो गए। तो साथियों, आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत आपके लिए आई। आप सुनाए हैं गुरु पूर्णिमा पर स्पेशल एपिसोड। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं। गुरु पूर्णिमा की बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं आपको जो है आध्यात्मिक गुरु कौन है ये पता चल गया होगा और उनसे हमारे जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है ये भी आप समझ रहे हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के विषय में कुछ पहलुओं को जाना और आप में से भी कुछ लोग अवश्य ही गुरु पूर्णिमा मनाते होंगे, तो हम वास्तविक अर्थ को जानकर इसे मनाएं, चाहे हम एकेडमिक गुरु के पास जाएं या आध्यात्मिक गुरु के पास, मगर उसके कहे पर आचरण करके चले तो सफलता अवश्य मिले। जहां हम एकेडमिक गुरु से सांसारिक रूप से भरपूर होंगे, वही आध्यात्मिक गुरु से अंतर से भरपूर होंगे, और जब दोनों ही भरपूरता से जीवन को जिएंगे तो हमें देखकर निश्चित रूप से दूसरे लोग भी हमसे कुछ न कुछ अवश्य अच्छा ही सीखेंगे तथा उनका जीवन भी अच्छा बनेगा। तो गुरु पूर्णिमा पर हम अपने गुरुओं का दिल से सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें तथा अपना जीवन गुरुओं की सुगंध से भरपूर करें। आप सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा की फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। धन्यवाद।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: गुड मॉर्निंग भोना।
1: गुड मॉर्निंग भैया।
0: ये मेरे गालों पे रंग किसने लगाया सुबह सुबह?
1: मैंने भैया।
0: तुमने? क्यों?
1: होली पे एग्जाम्स थे ना, इसलिए मैंने आपके साथ होली नहीं खेली, इसलिए आप खेल रही हूँ।
0: ओ तो आज तुमने होली की कमी पूरी कर दी।
1: हाँ।
2: अरे बच्चों क्या हो रहा है ये?
0: भोना मेरे साथ होली खेल रही है दीदी।
2: लगता है तुम लोग को होली का जो त्योहार है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा होली फेवरेट फेस्टिवल किसका है यहाँ पे?
3: मेरा दीदी।
2: सैंडी का? अच्छा तुम्हें होली बहुत पसंद है?
3: बहुत।
2: होली क्यों बहुत पसंद है?
3: कि मजा आता है होली सबके साथ खेलते हैं ना। रंग लगाना, फिर अलग अलग कलर्स, सात रंग, अच्छा लगता है बहुत।
2: होली खेलना बहुत अच्छा लगता है।
3: हाँ।
2: अच्छा मुझे ये बताओ, अब तक की जितनी भी होली तुमने खेली है तुम्हारी सबसे फेवरेट होली कौन सी थी?
3: सबसे फेवरेट होली 2 साल पहले।
2: 2 साल पहले? और उसमें ऐसा क्या स्पेशल हुआ?
3: मम्मी पापा मैं भैया सब साथ में खेले थे, ज्यादातर मैंने होली पापा के साथ खेली थी।
2: मतलब पापा के खूब रंग लगाया था?
3: पापा ने मुझे उठा के ना टब में डाल दिया था।
2: अच्छा।
0: पानी के टब में या रंग वाले टब में?
3: पहले पानी वाले टब में डाला, फिर रंग डाल दिया ऊपर से।
2: मतलब सैंडी का पूरा कलर चेंज हो गया।
3: होली
2: की स्पेशलिटी ये होती है। क्या होती है होली की स्पेशलिटी?
3: अलग अलग रंग।
2: बिल्कुल, रंग का ही तो त्योहार है होली। तो जब तक रंग बिरंगे ना हो तब तक मजा कैसे आएगा?
0: इस दिन तो दुश्मन भी इतने प्यार से होली खेलते, इतने प्यार से रंग लगाते कि ऐसा लगता है कि वो भी अपने ही
2: है। हाँ बात तो सही है, कहते हैं कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं।
3: हाँ दीदी।
2: तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको होली का, जो आपके दोस्तों के साथ आपने होली खेली हो या कुछ ऐसा हुआ हो जो आप हमें बताना चाहें?
3: फिर हम लोग थोड़ा केफ्री केफ्री में आ गए, फिर हम लोगों ने फोटो खींची, फिर इसको अभी पे अपलोड करा।
0: दीदी आपको पता मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है।
2: होली बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें पंकज?
0: हाँ दीदी।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि लोग होली को होली के तरीके से नहीं खेलते।
3: हाँ।
2: अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है किस तरीके से होली खेलनी चाहिए?
0: होली खेलनी चाहिए मतलब होली रंगों का त्योहार है और इसमें जितना रंग लगावे उतना अच्छा है, लेकिन इस त्योहार का लोग अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई कीचड़ में किसी को पटक देता है, तो कोई कपड़े फाड़ देता है और एक दूसरे को नाराज कर लेते हैं ऐसे त्योहार पे।
2: बात तो सही है, होली हमेशा हमें लोगों को खुश करने के लिए खेलनी चाहिए और अगर किसी को परेशानी हो तो हमें वो चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना? और किसी को जबरदस्ती रंग लगाना, कीचड़ में डालना, परेशान करना, ये सब तो हमें ना करना चाहिए और ना होने देना चाहिए।
0: इसलिए मुझे सिर्फ होली देखना ही अच्छा लगता है लेकिन खेलने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं होती।
2: आकाश आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है?
4: दीदी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है रक्षाबंधन।
2: अच्छा, और रक्षाबंधन क्यों?
4: क्योंकि दीदी रक्षाबंधन में ये होता है कि जब कोई सिस्टर मुझे राखी बांधती है ना, तो राखी बांधने के साथ साथ वो इतने सारे स्वीट्स मेरे मुंह में ठूस देती है कि खाते खाते मेरे को बहुत मजा आता है। और वो इतने टेस्टी होते है ना, मन करता है पूरा प्लेट ही में चटका।
2: और आपकी सिस्टर्स, आपको कितनी सिस्टर्स राखी बांधती है?
4: ऐसे तो मेरी कजिन्स में 21 सिस्टर हैं, लेकिन राखियाँ मेरे पास सिर्फ 8 आती हैं। मुझे रक्षाबंधन इसीलिए पसंद है क्योंकि मेरी कोई सगी बहन नहीं है और जब भी कोई मेरी कजिन सिस्टर मुझे राखी बांधती है ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे को भी एक तो बहन दे।
2: ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, बहनें इतनी प्यारी होती है ना।
3: हाँ दीदी।
0: हाँ लेकिन कजन सिस्टर भी तो अपनी अच्छी बहन होती है।
3: हाँ।
2: ये बात पंकज ने बिल्कुल सही कही, आपकी बहन नहीं है ऐसा दोबारा नहीं सोचना, क्योंकि वो सभी आपकी बहन है, है ना? तो रक्षाबंधन पे वो आपसे मिलने आती है?
0: नहीं, वो मेरे लिए राखी भेज देते हैं।

0: तो रक्षाबंधन पे तो बहन की याद आती होगी। और भुवना, आपको रक्षाबंधन अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: मैं भी मेरे भाई लोगों को राखी बेचती हूँ।
0: आप भी राखी बेचते हो अपने भाई लोगों को? तो आपको रक्षाबंधन में और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, बताओ?
1: मुझे सबसे अच्छी चीज कुछ नहीं लगती है, लेकिन बुरा लगता है, एक भाई नहीं है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ लेकिन स्कूल हो जाता है।
2: हम है ना भुवना, हमें कैसे भूल गई तुम?
0: हाँ, मतलब
3: हमारा हाथ सदैव आगे
0: है। मतलब अब कुछ और राखियाँ बढ़ने वाली हैं जो भुवना को भेजनी होगी, है ना? बच्चों, भाई बहन का रिश्ता हमारे इमोशन से होता है, तो अगर मेरी सगी बहन या सगा भाई नहीं है, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए।
4: ओके दीदी।
0: कोई भी हमारे आसपास है जिसे हम बहन या भाई मानते हैं, कजिन हो या ना हो, तो भी हम रक्षाबंधन मना सकते हैं।
4: हाँ दीदी,
0: है ना?
4: हाँ
3: दीदी।
0: क्या आप लोग मुझे ये बताओ, कभी अपने भाई बहन या उसको लेटर्स लिखते हो कि नहीं?
1: हाँ दीदी, मैं लिखती
0: हूँ। लिखते हो? और पंकज और सैंडी?
4: मैंने एक बार लिखा था।
2: और दीदी, मैंने कभी नहीं लिखा।
0: और आकाश, आजकल ईमेल और एसएमएस का जो जमाना है, लेकिन लेटर्स लिखने का भी अपना अलग मजा है।
4: मैंने ग्रीटिंग कार्ड लिखा था।
0: ग्रीटिंग कार्ड?
4: हाँ।
0: जब रक्षाबंधन होता है तो अपने भाई बहन को हम लेटर्स या फिर ग्रीटिंग कार्ड लिख के भी भेज सकते हैं, उन्हें हमारी प्रेजेंस फील हो जाएगी, है ना?
4: हाँ दीदी।
0: तो अगली बार से कौन कौन लेटर्स भेजेगा?
4: मैं।
0: बस सैंडी?
1: मैं भी।
0: और आकाश?
3: मेरे लिए तो पहले से दीदियां राखी में चिट्ठी भर के भेज देती हैं।
0: चिट्ठी भर के भेज देती
3: हैं।
0: अच्छा, यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप सबसे फिर से मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना, क्योंकि रोज हमारा एक त्योहार की तरह बीत सकता है अगर हम वापस उस सेलिब्रेशन के मूड में रहें और सबसे प्यार से बात करें तो रोज ही एक फेस्टिवल हो सकता है।
1: हाँ दीदी,
0: है कि नहीं। तो अभी हमने होली की बात की और रक्षाबंधन की बात की, पंकज तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा फेस्टिवल कौन सा अच्छा लगता है?
2: मुझे भी भूमना की तरह दिवाली पसंद है।
0: दिवाली पसंद है, और दिवाली तुम्हें क्यों अच्छी लगती है?
2: दिवाली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और ना ही किसी से बहस होती है। हम अपने घर पे उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी खुशी सेलिब्रेट करते।
0: अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा और नहीं होता इसलिए आपको दिवाली पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और दिवाली में सबसे स्पेशल चीज क्या करते हो तुम?
2: स्पेशल चीज तो हम दिवाली को हम सबसे स्पेशल ये करते हैं कि हम अपने सारे फ्रेंड्स को मिलते हैं और उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे जो लक्ष्मी पूजा होती है उसकी मिठाइयाँ खाते हैं।
0: अच्छा, लक्ष्मी पूजा के बाद जो मिठाइयाँ मिलती हैं इसीलिए पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और पटाखे नहीं जलाते?
2: पटाखे तो बहुत जलाते।
0: बहुत जलाते हैं?
2: हाँ।
1: फोड़ते हैं।
0: अच्छा, और फेवरेट पटाखा कौन सा है?
1: सुतली बम।
0: अच्छा, ये तो सैंडी का फेवरेट हुआ, पंकज का फेवरेट कौन सा है?
2: लक्ष्मी बम।
0: और भूपना, दिवाली तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना?
3: हाँ।
0: और तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: टिकड़ी।
3: चक्री।
0: चक्री देखना अच्छा लगता है और सबसे मिलना भी अच्छा लगता है। दिवाली के दिन तो हम सबसे मिलते हैं।
1: हाँ दीदी।
0: और लाइट्स और दिए जलाना किसे अच्छा लगता है?
4: मुझे।
0: आकाश को?
4: हाँ,
1: क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी रंगोली बनानी आती है।
0: अरे वाह, रंगोली बनानी आती है?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: अच्छा, क्या बनाते हो रंगोली में?
1: जैसे दिए टाइप, मतलब दीदी है ना हमारे पास में रहती है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है तो वो थोड़ा उनकी हेल्प कर देता हूँ मैं, रंग ला के देना और सब करना। अरे तो थोड़ा तो आता है ना।
0: और आकाश को रंगोली बनानी आती है, दिए जलाते हैं?
4: हाँ, रंगोली बनानी आती है।
0: रंगोली बनानी आती है, कभी रंगोली बनाई है आपने? क्या बनाते हो?
4: रंगोली में एक चक्री जैसा गोल सा बनाता हूँ। हर दिवाली में अलग अलग तरह की बनाता हूँ।
0: तो लास्ट दिवाली में आपने क्या बनाया था?
4: लास्ट दिवाली में मैंने बनाया था एक बड़ा सा सर्कल बनाया था, उसके अंदर फ्लावर था, फिर फ्लावर में व्हाइट कलर से मैंने लिखा था हैप्पी दिवाली।
0: अरे वाह,
1: नाइस,
0: ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था।
1: अच्छा, तो मेरी तरह नहीं बनाते हो।
0: और आकाश, क्या क्या करते हो दिवाली पे?
4: दिवाली में घर में सबसे पहले जो दिए खरीद के लाता हूँ, दिए भी मैं ही चूज करता हूँ, दिए को धोता हूँ, दिए में डालने के लिए बत्ती बनाता हूँ, सबसे रात में घर पे मैं ही दिए सब जगह में लगाता हूँ, और जब सब जगह दिए लग जाते हैं तो सारे घर की लाइट ऑफ कर दो, ताकि मतलब बाहर से जाने से इतना अच्छा चमकता है ना घर, बहुत सुंदर लगता है।
0: बात तो सही है, दीवों की रोशनी से जब घर जगमगाता है तो वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है ना? और आजकल तो इलेक्ट्रिक दिए और इलेक्ट्रिकल कैंडल्स भी आ गई हैं।
1: हाँ दीदी, बहुत
0: है ना,
2: लेकिन तो हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए।
0: हाँ, हमें ओरिजिनल दिए और ओरिजिनल कैंडल्स यूज करने चाहिए।
1: हाँ,
4: आखिर भारत की परंपरा
1: है
0: और हम बच्चे ही तो उसे आगे लेके जाएंगे। हाँ।

0: और फिर ओरिजिनल में जो मजा है
1: वो लेटेस्ट में नहीं है।
0: हाँ सही बात है।
2: कि ओरिजिनल में मजा आता है ना, जैसे कोई बड़ा सा बम फोड़ दिया हमने, जैसे सुतली बम फोड़ दिया, भाड़ करके आवाज आई तो दिए बुझ जाते,
1: फिर वापस जलाना उसे।
2: हाँ
0: उसमें भी मजा आता है।
1: और ज्यादातर दिए हम ही बुझाते हैं, बम फोड़ते दिए लेके जाते हैं।
3: हाँ, मैंने भी दियो के नीचे बम रख के बहुत फोड़े।
2: हाँ
1: मैंने भी बहुत।
2: एक दिन मैंने क्या किया था, छोटी दिवाली थी तो बीच में सुतली बम रख दिया था, चारों तरफ से रेत डल दी थी, फिर उसको जला दिया था, फट करके फूटा, सारा रेत आजू बाजू फैल गया।
0: लेकिन हमें पटाखे जलाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
3: हाँ दीदी, एक बार मेरा हाथ जल गया था।
0: कहाँ जल गया था?
1: मेरा
0: कैसे?
1: भी मेरा तो जो अनार होता है ना, तो वो फूटता तो है नहीं, तो मुझे लगा ये फूटता नहीं, मैंने अनार धरा लिया जला के, फिर हाथ में ले कैसे कर रहा था, फिर वो फूट गया तो थोड़ा हाथ में चोट लग गया था।
0: हाथ में चोट लग गई थी। हाँ। ये कितनी पुरानी बात है सैंडी?
1: ये पुरानी बात 3 साल पुरानी बात है।
0: तो अभी आपका हाथ फिर ठीक हो गया?
1: हाँ, ज्यादा चोट नहीं लगा था, तब से मैंने तो अनार को भी जला के दूर भाग जाता हूँ।
0: हाँ, हम एक लंबे से अखबार का या किसी लंबी सी चीज का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम उस पटाखे से दूर रहें, और कभी भी जब तक वो पूरी तरीके से बुझ ना जाए, उसको देर ना हो जाए, तब तक उसे हाथ में ना लें और ना ही उसके पास जाएं।
3: हाँ दीदी, मैंने नोटिस किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि अनार में, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों होता है कि अनार फूट जाते हैं।
1: हाँ दीदी, आजकल ऐसे अनार अच्छे नहीं आ रहे।
2: करीब जब मैं 5 साल का था तो मेरे पापा ने करीब 2000 के पटाखे लेकर आए थे, उसके अंदर करीब 30 अनार थे। तो हमने पहला बॉक्स खोला, तो बॉक्स में से जब अनार जलाना चालू किया ना, तो अनार करीब मेरे से 2 कदम सामने था, मैं और पापा अनार को जला के देख रहे थे। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, इतनी जोर से फूटा, आँख में उसका जो चूरा होता है ना वो घुस गया था, चारों तरफ से धुंधला धुंधला कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं धुआं दिखाई दे रहा, काफी चेहरे पे छींटा मारा, तब जाके आंख की रोशनी साफ हुई, तब ठीक तरह से देख पाया।
0: आजकल पटाखे भी ऐसे आ जाते हैं, और साथ ही साथ हम जब दिवाली के बाद अखबार पढ़ते हैं तो कई ऐसी दुर्घटनाएं हमें सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं, जो कि फेस्टिवल का सारा मजा तो खत्म कर ही देती हैं, बल्कि उनसे हमें सबक भी लेना चाहिए।
1: हाँ, आजकल के पटाखे काफी खराब आ रहे हैं।
0: पटाखों को कम जलाने में हमारे पर्यावरण की भी भलाई है और हमारी भी।
1: हाँ, वायु प्रदूषण बहुत होते हैं।
0: और भुवना, आप क्या क्या करते हो दिवाली में?
4: मैं भी बहुत सारी पटाखे जलाती हूँ।
3: लेकिन तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल है, तो कुछ स्पेशल करती होगी तुम?
4: हाँ, मैं बहुत ज्यादा स्नेक्स को जलाती।
0: स्नेक्स?
1: हाँ मस्त आते, जलाओ अंदर सांप निकलते।
2: हाँ, छोटे छोटे
1: छोटे छोटे आते पीछे से आते हैं।
0: अच्छा, वो छोटी छोटी जो ब्राउन कलर की गोलियां आती हैं, ब्लैक कलर की गोलियां आती हैं, वो आपको बहुत पसंद है भुवना? और क्या क्या अच्छा लगता है आपको दिवाली के बारे में?
4: हर दिवाली में सारी फैमिली हमारी घर आ जाती है, तो इतना फुल घर, इतना अच्छा लगता है मुझे। फैमिली बहुत पसंद है।
0: फैमिली बहुत पसंद है क्योंकि सब लोग मिलते हैं और साथ में इकट्ठा होते हैं, इसलिए आपको दिवाली बहुत अच्छा लगता है?
4: हाँ दीदी।
0: ओके।
4: और इस फेस्टिवल पे इतना पसंद क्योंकि मेरे पापा भी खेलते हैं।
0: आपके पापा भी आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए आपको दिवाली अच्छी लगती है?
4: हाँ दीदी, कोई भी फेस्टिवल मेरे पापा नीचे नहीं आते, लेकिन जब दिवाली होती है सारी फैमिली नीचे आती है, एंजॉय करते हैं और लास्ट पे आइसक्रीम खाते हैं।
0: मतलब अगली दिवाली पे सब लोग अपनी आइसक्रीम खा सकते हैं कि नहीं भुवना?
4: हाँ।

0: अच्छा, और कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं? ये तो हमारे इंडिया के बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़े फेस्टिवल्स हैं जिनकी हमने बात की।
1: हाँ दीदी,
0: क्या कोई ऐसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी हैं जो आपके घर पे या फिर आपके आसपास बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, या आपको कुछ खास पसंद है?
1: हाँ दीदी, मुझे मकर संक्रांति भी बहुत है।
2: मुझे भी बहुत
0: मकर संक्रांति।
3: हाँ दीदी, उसके अंदर अलग अलग तरीके के मंजे लेकर आते हैं और ना पतंगों को काटने में बड़ा मजा आता है।
4: मुझे भी संक्रांति बहुत पसंद है दीदी, लेकिन मुझे पतंग उड़ाना नहीं।
0: तो फिर क्या अच्छा लगता है भुवनंद में?
4: पतंग देखना उड़ते हुए।
0: पतंग उड़ते देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, बात तो बिल्कुल सही है। और पंकज को क्या अच्छा लगता है मकर संक्रांति में?
1: मुझे मकर संक्रांति पे उस बंदे की पतंग काटना अच्छा लगता है जो अपने आसपास के सारे पतंगों को काट कर अकेले मजे में उड़ रहा हो।
0: अच्छा, मतलब जो सबकी पतंग काट रहा हो आप उसकी पतंग को काटना चाहते हैं?
1: हाँ दीदी, और मैं काट भी देता हूँ।
2: सिखा आखिर मैंने, है ना?
0: अच्छा, मतलब सैंडी आपकी पतंग टीचर है?
2: हाँ।
1: सिर्फ यहाँ बोल रहा है, नहीं।
2: हाँ, सिखाया मैंने।
0: और आकाश को क्या अच्छा लगता है?
3: मुझे पतंग जब उड़ाते हैं ना, तो एक बार मैं और मेरे पापा ने क्या किया था, एक पिंक कलर की पतंग थी जो हमारे इलाके में करीब जितनी भी पतंगें उड़ रही थी ना, खच खच खच

0: एक्सचेंज को ला सकते हैं।
1: दीदी मुझे नवरात्रि भी अच्छी लगती है क्योंकि गरबे खेलते हैं ना 9 दिन।
0: हाँ।
1: और मुझे खेलना भी आता है
2: और मुझे थोड़ा थोड़ा आता है और लोग मुझे देख के हंसते हैं इसलिए मुझे और मजा आता है।
1: और गरबे मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने सिखाया, ये तो बात तो झूठ बोलना ही मत।
0: अरे वाह, मतलब सैंडी गरबा खेलते हैं तो फिर सैंडी को तो हम सबको गरबा सिखाना पड़ेगा।
1: ठीक है।
2: सैंडी को बस अपनी वाहवाही चाहिए।
1: गरबा खेलना मुझे बहुत अच्छे से आता है और मुझे ये हमारे पास में एक फ्रेंड है वो गुजरात से बिलोंग करता है उससे आता है, उसने मुझे सिखाया।
0: हाँ, गुजरात में तो गरबा बहुत खेला जाता है,
1: फेमस है वहाँ।
0: आखिर वो वहाँ की तो डांस है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना। और उसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, सब लोग मिलके ऐसे कर सकते हैं,
1: मिलके खेलते हैं, वो मजा आता
0: है ना। और डांस करना और गरबा करना किसको अच्छा लगता है?
3: मुझे भी
0: सबको अच्छा लगता है।
4: हाँ दीदी।
0: भुवना, आपको गरबा आता है कि नहीं?
4: हाँ आता है।
3: लेकिन मुझे नहीं आता। मेरे को सिर्फ गरबा में एक स्टेप आता है, एम बनाना, वो भी ढंग से नहीं कर पाता। जहाँ गोल गोल घूमते वहाँ जाके बस हाथ हिला के आ जाता हूँ, बोले मैंने गरबा खेल लिया।
1: इसमें भी मजा है।
3: हाँ,
1: जब अपने को नहीं आता, नहीं कोई देखता है ना, फिर हंसता है तो मजा आता है।
3: किसी के हंसी का हम कारण बने, उसको खुशी मिलती है तो हमको भी अच्छा लगेगा।
0: ये बात तो आपने,
1: और गरबा तो मेरे घर के आगे होता है।
0: खुशी मिलनी चाहिए, डांस अच्छा हो नहीं हो, कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं?
1: हमने एंजॉय किया।

0: अच्छा यहाँ पे गणेश चतुर्थी किस किस को अच्छी लगती है?
1: मेरी फेवरेट है,
2: मुझे भी पसंद है।
1: क्योंकि हम विसर्जन में जाते हैं ना, जो विसर्जन में डांस करते हैं, सबसे मजा आता है।
0: और गणेश जी के घर में स्थापना होती है,
2: विसर्जन में डांस करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि उसमें डांस करने का कोई तरीका नहीं होता।
1: जैसा आए वैसा करो।
0: बिल्कुल, जैसा मन करे वैसा करो।
2: हाँ दीदी।
0: और शुरुआत कैसे होती है गणेश चतुर्थी की?
1: गणेश चतुर्थी की शुरुआत तो हमारे कॉलोनी में मेरे घर के आगे रखते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि हमारे कॉलोनी में तो पहले की गणेश जी की मतलब आज स्थापना करनी है, तो दो दिन एक दिन पहले जाएंगे गणेश जी की मूर्ति अच्छी सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम क्या ढोल नगाड़े की मूर्ति लेके आते हैं, ढोल नगाड़े से लेके आते हैं, फिर पंडित जी को बुलाते हैं, फिर मुहूर्त देते कि हाँ किस मुहूर्त में स्थापना करनी है, फिर उस मुहूर्त में स्थापना करते, फिर हमारे कॉलोनी में से कोई भैया मतलब बैठते पूजा के लिए, फिर स्थापना करके उसके बाद से फिर शाम को प्रोग्राम रखते हैं, मतलब आरती का, गणेश जी की आरती सुबह शाम करनी पड़ती है, तो शाम को हमारे यहाँ मतलब आरती की बोली भी लगती है।
0: आरती की बोली?
1: हाँ, तो मतलब इसमें कि जो मतलब अच्छी बोली लगाता है वो मतलब शाम की आरती करता है।
2: अच्छा, मतलब गणेश जी की पहली आरती उसे मिलती
1: है? हाँ, पहली आरती उसे मिलती है। फिर ऐसे मतलब जितना दिन रखना हो मतलब उतना गणेश जी को रखते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब सब मूर्तियाँ साथ में निकलती है, तो कम से कम 250 मूर्ति साथ में निकलती है, फिर ट्रैक्टर पे मतलब जो ट्रक होता है उस गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए जाते हैं, फिर साथ में डीजे वजे होता है, फिर जाते साथ में, फिर मस्त कपड़े पहन के मतलब गणेश जी का मतलब ड्रेस लाते हैं सबका एक जैसा,
3: ब्लैक ब्लैक जीन्स और ऑरेंज कलर का।
1: हाँ, मतलब जैसा अच्छा लगे, मतलब कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सबका एक जैसा लाते हैं, फिर डीजे लगाते हैं, फिर साथ में यहाँ से डांस करते हुए लेके जाते हैं,
0: डांस करते हुए।
1: हाँ, गुलाल फेंकते हुए और डांस करते हुए ले जाते हैं, बहुत मजा आता है,
0: खूब मजा आता होगा। हाँ। फ्रेंड्स और फैमिली हर कोई होता है ना।
1: हाँ।
0: और आप लोग ये बताओ कि कोई फेस्टिवल्स की ऐसी चीज भी है जो आपको अच्छी नहीं लगती?
1: नहीं, हमें सारी फेस्टिवल अच्छे लगते।
0: तो आज हमने फेस्टिवल्स के बारे में खूब रंग बिरंगी मीठी खट्टी बहुत ढेर सारी बातें की, और हमें बहुत मजा भी आया, और हमें ये भी पता चला कि कैसे हम मनाते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें इन फेस्टिवल्स के दौरान बरतनी चाहिए।
4: हाँ दीदी।
0: अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर से करेंगे कुछ ऐसे ही बातें, लेकिन उससे पहले क्योंकि फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे तो फेस्टिवल्स पे तो खूब गाना बजाना और डांस होता है, तो हो जाए एक गाना।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड. अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि में। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा विशेष। गुरु पूर्णिमा वह दिन जब हम अपने जीवन में मार्गदर्शन देने वाले गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। यह पर्व भारतीय संस्कृति में ज्ञान, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत इन गीतों के साथ करते हैं।

नमस्कार दोस्तों, आज का दिन महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसी महान रचना दी। इसी कारण गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देहो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सही दिशा पाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन होना आवश्यक है। गुरु ही वह दीपस्तंभ है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने गुरुजनों को वंदन करें और उनके आशीर्वाद से जीवन को सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत, गुरु वचनों को रख।

0: नमस्कार श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जीवन में गुरु के महत्व की। गुरु केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ही नहीं होते, हमारे शिक्षक, माता पिता, मार्गदर्शक या कोई भी व्यक्ति जिसने हमें सही राह दिखाई, वही हमारे गुरु है। गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। वे हमारे जीवन के दीप स्तंभ है जो अंधकार को दूर कर प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करें। गुरु का मार्गदर्शन ही जीवन को सार्थक बनाता है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब मिलकर अपने गुरु को वंदन करें और उनके आशीर्वाद से जीवन को उज्जवल बनाएं।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक प्यारा सा सुंदर गीत।

नमस्कार दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का सार यही है कि हम अपने जीवन में प्रकाश देने वाले व्यक्ति को धन्यवाद दें। कभी वह हमारे शिक्षक होते हैं, कभी माता पिता, कभी कोई मित्र, और कभी वह परमात्मा जो हमें भीतर से मार्गदर्शन देता है। गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। वे हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक है जो हर कठिनाई में हमें सही दिशा दिखाते हैं। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का आशीर्वाद ही जीवन को सार्थक और उज्जवल बनाता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने गुरुजनों को वंदन करें और उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करें। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं और एक सुंदर और प्यारा गीत।

तो आइए दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब मिलकर अपने गुरुओं को नमन करें और जीवन में ज्ञान, शांति और प्रेम का दीप जलाएं। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से आप सभी श्रोताओं को, गुरु भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: मेरा तो शादी का कोई इरादा नहीं था सर, मैं तो सोच रहा था कि मार्च में MSc का एग्जाम देकर किसी नौकरी पे लग जाऊंगा, कहीं एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये सब,
3: इसका मतलब है कि फिलहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकते और ना ये चाहते हो कि सावित्री की शादी सागर या किसी दूसरे के साथ हो।
2: मैं तो यही चाहता हूं सर, लेकिन उधर माँ का दबाव, सागर के एहसान, मुझे तो डर लगता है सर। सर मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप मेरे गॉडफादर हैं, आप मेरे फादर बनकर उनसे बात कीजिए ना, आप हम दोनों को बचा सकते हैं।
3: डोंट वरी माय सन, सावित्री की शादी तुम्हारे साथ ही होगी, मैं उनसे जाकर रिश्ते की बात करूंगा।
2: थैंक यू सर।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। जी हाँ, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसे देखकर हमें खुशी होती है, और कई बार जीवन में हमारे पास ऐसी चीजें आ जाती हैं कि हमें देखकर बहुत दुखी होना पड़ता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को देखकर किस तरह का विचार करते हैं। इसलिए अगर हर चीज को देखकर आप उसके सकारात्मक पहलू को देखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया, आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। जी हाँ साथियों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए हम सभी को मेहनत तो करनी है, और साथ ही साथ हमारा सम्मान भी हो। जब हम दूसरों को सम्मान दे तो हमें सम्मान अपने आप मिल जाता है, ये मांगने की कोई चीज नहीं है। तो आइए बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, कई बार कोई खूबसूरत चीज देखने को मिल जाते हैं तो निगाहें हटती नहीं, ऐसा ही कुछ भाव भरा राजा मेहंदी अली खान का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है मोहम्मद रफी साहब की खूबसूरत आवाज में। मदन मोहन का संगीत से सजा ये गाना है आपकी परछाइयां इस एल्बम से, जो 1964 में रिलीज हुई थी। तो चलिए इस गाने का लुत्फ उठाते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। आपकी परिचय इस एल्बम से, मोहम्मद रफी साहब का गाना आपने सुना, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाओ कैसे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और काफी अच्छी बातें होगी और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और खुशी मिलती है हमें पढ़कर। एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। 1956 की बात करूं तो ये बसंत बहार करके एक फिल्म आई थी जो ओल्ड बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही और हसरत जयपुरी साहब का लिखा एक गीत इसमें बहुत ही अच्छा है जो एम अक्षर से आता है और जिसे आवाज दिया था लता मंगेशकर ने। शंकर जय किशन की खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है, जैसे कि मैं पिया तेरी तू माने या ना माने,
2: पिया तेरी तू माने या ना माने।
1: जी हाँ साथियों, ये भाव बहुत ही खूबसूरत है। जब मैं इस गाने को सुनता हूँ कहीं ना कहीं एक जो है सच्चा प्यार का इसमें इजहार होता है और जो लोग सच्चे प्यार करते हैं वो किसी और की अपेक्षा पर जीवन नहीं जीते, ना ही किसी से कोई अपेक्षा करते हैं, बस वो प्यार देते रहते हैं चाहे कोई उनसे प्यार करे या ना करे, लेकिन वो जिनसे प्यार करते हैं वो पूरी तरह से निचार हो जाते हैं। तो आइए ऐसा ही खूबसूरत सा गाना अभी आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, बसंत बहार का ये खूबसूरत गाना अभी आपने सुना, ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, कहते हैं किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ले। कई बार हम लोग जो है यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमते रहते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बार घूमता रहा काम की तलाश में, नौकरी के चक्कर में, लेकिन कहीं से नौकरी नहीं मिला। आखिर उसने एक दिन मुझसे बात की तो मैंने उसे यूं ही कहा, अरे नौकरी मांगने से नहीं, आप खुद का अपना ही बिजनेस शुरू कर लीजिए। तो उसको ये बात जच गई और वो बिजनेस करने लगा और आज एक अच्छा मेडिकल स्टोर जो है चला रहा है और जब भी मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है मुझे देखकर। तो कहने का भाव ये है कि आप जब नौकरी के चक्कर में लगते हो तो काफी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, उससे अच्छा हम उस टाइम में अगर किसी छोटे से बिजनेस को कर लेते हैं तो उससे हमारा अनुभव भी बढ़ता है और हमारे अंदर एक कमाने की जो जिज्ञासा है वो भी बढ़ जाती है। और धीरे धीरे बिजनेस क्या होता है कि आप एक्सपांड कर सकते हैं और आप अपने मर्जी के मालिक बनते हैं, तो है ना सही बात। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, 1962 की तरफ। जी हाँ, एक मुसाफिर एक हसीना ये फिल्म आई थी, बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी। इस फिल्म का एक गाना है जैसे कि ये।

मैं प्यार कर रहा हूँ तेरे जुल्फों के साय में। राजा मेहंदी अली खान का लिखा ये गीत है। आशा भोसले और रफी साहब ने इस गीत को गाया है। ओपी नैयर का खूबसूरत संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, तो चलिए बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है और आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। जैसे कि हम बातें कर रहे हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा रहे। जी हाँ, ये हमारे काफी करीबी दोस्त ने मैसेज किया है, राजेश जी ने। और जब भी बेचते हैं, बहुत कम बेचते हैं लेकिन अच्छी बातें भेज देते हैं, तो ये छोटी सी लाइन उन्होंने भेजी थी, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी मेहनत अच्छी तरह से और लगातार आपको करने से आपकी सफलता शोर मचा देगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलूंगा, 1959 की तरफ, जहां एक फिल्म आई थी छोटी बहन। जी हाँ, इस फिल्म में एक राखी का गीत भी है और राखी का ये जो गीत है वो एम अक्षर वाला, इसलिए मैं आज आपको सुनाऊंगा। और यहाँ पर भाई बहन का जो प्यार है इस फिल्म में दिखाया गया है। तो हसरत जयपुरी साहब का लिखा एक खूबसूरत गीत है जैसे कि ये। जी हाँ, आपने बहुत बार इस गीत को सुना होगा। तो चलिए, लता जी की खूबसूरत आवाज में ये गाना है, सुबीर सेन के साथ शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये छोटी बहन का बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है ना? सही बात। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम लोग जीवन में खुशियां पाने के लिए या फिर हम अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए जीवन से लड़ पड़ते हैं, लेकिन लड़ना नहीं है, लड़ना अपने आप से कभी भी नहीं, ना दूसरों से, बस जिंदगी के इन ऊंचे नीचे पड़ाव को समझना सही है। और जब हम समझने लगते हैं तो जिंदगी आसान बन जाती है। तो चलिए आपकी जिंदगी में और खुशियों को बढ़ाने के लिए एक और गीत की तरफ मैं ले चलता हूँ। ओपी नैयर का संगीत बंद, आशा भोसले का ही गाया हुआ, एस एच बिहारी का लिखा हुआ ये खूबसूरत गाना, मैं शायद तुम्हारे लिए। और ये एक फिल्म आई थी 1965 में जिसका नाम था ये रात फिर ना आएगी। तो चलिए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके नाम, खुश रहो खुशियां बांटो।

कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप कुछ नया आजमाने को तैयार हैं। जी हाँ, सही बात है। कभी कभी हम लोग जो है अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम सोचते हैं कि जिस शहर में हम हैं वहीं पर नौकरी लग जाए, वहीं पर बिजनेस शुरू करें और वहीं पे हमें सफलता मिले। और कभी कभी ये चीजें जो है बहुत लंबा सफर हमारा तय कर देने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए किसी ने कहा कि कम्फर्ट जोन जो है उससे थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और दूसरे नए लोगों से जब मिलेंगे तो नया अनुभव आपके साथ आएगा और आप नया कुछ कर पाएंगे। तो आइए बातों के साथ साथ मैं गाने की तरफ भी आपको जोड़ना चाहूंगा। 1958 की एक फिल्म थी जिसमें बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये 1958 का, चलती का नाम गाड़ी। किशोर कुमार, अशोक कुमार, सभी इन्होंने इस फिल्म में, तीनों भाइयों ने काम किया है और मस्ती भरा कॉमेडी वाला ये फिल्म थी। और अशोक कुमार का बहुत ही एक अच्छा रोल और किशोर दा का कॉमेडी रोल जो है इसमें सभी को गुदगुदी देता है। तो एक्टिंग के साथ साथ इन्होंने गाने भी गाए हैं। तो इस फिल्म को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देख लीजिए, चलती का नाम गाड़ी, जो 1958 में आई थी। और इस फिल्म में एक गाना है जैसे कि ये

जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, आशा भोसले किशोर कुमार ने इस गीत को गाया था, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा चलती का नाम गाड़ी इस एल्बम का ये गाना अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गजरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।

वाह वाह वाह, क्या गला पाया है, कमा खाओगे प्यारे। रानी साहबा, आप तो वकील साहब को प्राइवेट सेक्रेटरी रख लीजिए अपना। मैं वकालत में रखा है क्या है रानी साहबा, आवा वकील साहब, छोड़ो वकालत और पकड़ो ढोलक, फिर तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन था।

एक और खूबसूरत लाइन है हमारे दोस्त ने लिखे भेजा है, लिखते हैं, समझनी है जिंदगी को तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी को तो आगे देखो। क्या बात है। आशा करता हूँ आप समझ ही गए होंगे कि जिंदगी को समझने के लिए पीछे का अनुभव काम आता है और जिंदगी जीने के लिए आगे देखना है, ताकि हम पैर हमारे कदम जो बढ़े आगे, कहीं रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। जी हाँ, आइए, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी 1964 में, जिसका नाम था जहां आरा। और ये फिल्म में भी एक गाना है, जैसे कि ये, मैं तेरी नजर का सुरूर हूं। राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस गीत को लिखा था, तलत महमूद ने आवाज दी थी, मदन मोहन साहब ने इसे संगीत से संवारा था। जी हाँ, ये जहां आरा जो फिल्म है, बहुत ही अच्छा फिल्म है। इस फिल्म का एक गीत ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और इसी के साथ मैं आपसे अभी चाहूंगा इजाजत। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, कुछ नई बातें, कुछ नई अनुभव को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ, और मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

रात को जी, हाय रात को जी, बोले पतिहारा भेद खोले, तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले, तेरा मेरा तेरा जी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

में किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: एक जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है।

0: साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता।
1: तू कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको मेरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं, भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं, जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आ मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम।

छोर गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया तन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उघारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे।

0: हेलो पुराना स्तंभ जी।
1: हेलो मनु।
0: आज आप हमेशा की तरह खुश नजर नहीं आ रहे, क्या बात है?
1: कैसे होऊंगा मैं खुश, माँ से मॉम और पिताजी से पा का सफर तय करते करते घर का खाना भी पिज्जा बर्गर और फास्ट फूड बन गया है। बच्चों को पोषण कम मिल रहा है और ऐसे में बीमारियाँ कम उम्र में ही शरीर को कमजोर करने लगी है मनु। हरी सब्जियां, दाल रोटी, बच्चे इससे ऐसे दूर भागते हैं मानो कोई भूत हो।
0: लेकिन माता पिता भी क्या करें,

0: बच्चे जिद जो करते हैं उनकी बात माननी ही पड़ती है।
1: सेहत के साथ समझौता, आज नहीं तो कल, असर दिखता है मनु। और अगर बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए तो अभी उनकी पसंद नहीं बल्कि सेहत देखनी होगी।
0: और बच्चे?
1: बच्चों, टेस्ट जुबान तक ही रहता है, बाद में पेट बेचारा सहता है। अगर कड़वी दवाई इंजेक्शन से बचना है तो खाओ तुम पौष्टिक खाना, ये मेरी बात मेरे नन्हे दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, समझी मनु?
0: हाँ हाँ बिल्कुल पुराना स्तंभ जी, वैसे हरी सब्जियाँ मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है, मगर खाऊंगी तो शायद पसंद आने लगेगी, तो पौष्टिक खाना कल से डन। अच्छा पुराना स्तंभ जी, वीर सावरकर जी की आगे की कहानी भी तो सुनाइए ना।
1: हाँ हाँ हाँ जरूर, तो सुनो वीर सावरकर की कहानी। 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिल्ली आगमन की पूर्व संध्या पर उन्हें सावधानीवश बेलगाम जेल में रोक कर रखा गया। मई 1952 में पुणे की एक विशाल सभा में अभिनव भारत संगठन को उनके उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्ण होने पर भंग किया गया।
0: अच्छा।
1: 10 नवंबर 1957 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वे मुख्य वक्ता रहे।
0: अच्छा।
1: 8 अक्टूबर 1959 को उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया।
0: अरे पा।
1: 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी यमुना बाई चल बसी। 1910 ईस्वी में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में वीर सावरकर एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए, परंतु फ्रांस के मार्सलीज बंदरगाह के समीप जहाज से वे समुद्र में कूदकर भाग निकले, किंतु पुनः पकड़े गए और भारत लाए गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों में वीर सावरकर का नाम बेहद महत्वपूर्ण रहा है।
0: बिल्कुल।
1: महान देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया। अपने राष्ट्रवादी विचारों से जहां सावरकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, वहीं दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के बाद भी उनका जीवन संघर्षों से घिरा रहा। एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और उन्हें आजीवन काले पानी की दोहरी सजा मिली। सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल यानी सेल्युलर जेल में रहे।
0: अच्छा।
1: 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 जेल भोगी।
0: अच्छा।
1: 1937 ईस्वी में उन्हें मुक्त कर दिया गया था, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उनका समर्थन न प्राप्त हो सका और 1947 में इन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया।
0: अच्छा।
1: महात्मा रामचंद्र वीर जो हिंदू महासभा के नेता और एक संत थे, उन्होंने उनका समर्थन किया। इतनी मुश्किलों के बाद भी वे झुके नहीं और उनका देश प्रेम का जज्बा बरकरार रहा।
0: अच्छा।
1: और अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर बाइज्जत बरी करना पड़ा।
0: वाह।
1: उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, मेरा आजीवन कारावास और अंडमान की प्रतिध्वनियां अधिक प्रसिद्ध है।
0: अच्छा, इतनी सारी किताबें।
1: उन्होंने जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा।
0: ओ।
1: सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे मनु।
0: अच्छा।
1: उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी 1966 में मुंबई में हुई थी। 1966 में वीर सावरकर के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया।
0: अच्छा,
1: उस समय हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता प्रारंभ होने लगी थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनी थी और इनके नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: ऐसे थे वीर सावरकर जी।
0: कमाल है, देश को आजाद कराने का ये जज्बा और ये निष्ठा अकल्पनीय है।
1: क्योंकि ये कहानी उन हजारों मर मिटने के इरादों से लिखी गई है जो भारत माँ के सपूतों के रोम रोम में बस रहे थे।
0: पुराना स्तंभ जी, मुझे आपकी बात याद आ गई कि अगर स्वस्थ शरीर चाहिए तो स्वस्थ खाना भी तो होगा। फास्ट फूड से तो हम किसी दुश्मन का मुकाबला भी नहीं कर सकते
1: और ना किसी दोस्त को सहारा दे सकते हैं। स्वस्थ रहना हर वक्त जरूरी है मनु। हम जीवन में अपना ध्यान नहीं रख सकते तो किसी और का क्या रखेंगे।
0: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मतलब हरी सब्जियों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। आज की कहानी के लिए थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
1: बाय बाय मनु।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आते क्यों नहीं? जाओ जाओ जाते क्यों नहीं? फूल सर रुख।

ना निकला दस गया शब का अंधियारा, दस गया शब का अंधियारा। आओ आओ आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं, फूल सर रुख और

आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं। फूल सा रुख और शबनम शबनम बन झलक में लुट के रहे हम। फूल सा

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि खुशी शायद होंठों तक सीमित है, चाहे शायद मेरी हंसी तक सीमित है, चाहे मैं जब बच्चों के साथ होता हूं तो जो खिलखिलाहट होती है वहीं तक सीमित है, लेकिन वो हंसी है, खिलखिलाहट है। खुशी मेरे अंदर की बात है, मेरे अंदर की वो फीलिंग है जो मैं खुद क्रिएट कर पाता हूँ। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि लगता था कि यही सब बातें जो बाहरी रीति से हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उसी पर खुशी निर्भर करती है, और निर्भरता बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस श्रृंखला में जहां हम बातें करने लगे हैं, वहां ये बात समझ में आती है कि ये मेरी अपनी अपनी क्वालिटी भी है और मेरी अपनी क्रिएशन है। मजेदार बात यह है कि उसे क्रिएट करने के लिए मुझे अपने थॉट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं संकल्प कर रहा हूं, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स आ रहे हैं या मैं उन्हें क्रिएट कर रहा हूं, ये भी एक नई वोकैबुलरी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जिनका हम रिकैप करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। मैं थॉट तक तो ले आई कि जब हमने उस फीलिंग को देखा कि खुशी कहाँ है, मैंने देखा कि ये सब में ढूंढ रहे थे, ये सब में समझा वो नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने आप को चेक किया तो वो खुशी मेरी अपनी क्रिएशन मुझे समझ में आई, और मेरा थॉट मेरी उस फीलिंग को क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव खुश वाला थॉट जो था वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, और ये जो इतना पावरफुल चीज है, इतनी शक्तिशाली वस्तु मेरे पास है, अनुभव कहें या कुछ भी कहें, एनर्जी कहें, वो कैसे क्रिएट होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो थॉट्स क्रिएट करते हैं?
1: हमने जैसे देखा कि परिस्थितियां आती हैं, लोग ऊपर नीचे कई बार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, एंड थिंग्स वर बिकमिंग चैलेंजिंग, अनप्रडिक्टेबल। यू नो, सडनली समबडी बिहेव्स इन अ वेरी अनप्रडिक्टेबल वे, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो कभी ना कभी ये एक थॉट चलना शुरू हुआ कि आखिर इस तरह से अगर जीवन चलती जाएगी तो देर इज जस्ट नो वे आई कैन बी हैप्पी। तो फिर हमने जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स हैं, सॉरी, चाहे वो एंग्जाइटी है, वरी है, उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यस, सिचुएशंस आर चैलेंजिंग, तो सिचुएशन पर थॉट डिपेंडेंट है, तो यस, हमेशा खुश रहना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमेशा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने वाली है। हमेशा रिश्तों में हर चीज मेरे अनुसार चले, ये नहीं होने वाला है। लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करें, ये नहीं होने वाला है। आप जैसा मैं सोचूं वैसा बिहेव करें, ये नहीं होने वाला। सो इफ माई हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन वी रियलाइज्ड के सिचुएशन तो बाहर से आती, थॉट हम करते, और अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें और अपने आप को चेंज करना शुरू करें, हो सकता है हम उसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर सकते। पहली बात तो हैप्पीनेस क्या है, यू नो, दैट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क। वी रियली डोंट नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम you know, बहुत ज्यादा कुछ उमंग उत्साह उस तरह की बात कर रहे हैं? हैप्पीनेस डजेंट मीन ऑलवेज दैट यू आर जम्पिंग अप एंड डाउन, लाइक दैट्स नॉट हैप्पीनेस। कहीं कुछ बात हो गई है, घर में कोई हादसा हो गया है, किसी कोई इलनेस है, somebody has left the body, तो देर इज नॉट क्वेश्चन, आप बोलोगे इस टाइम हाउ कैन आई बी हैप्पी? Yes, this time I cannot be happy, but can I be stable? That's very important. Or is it that pain and sorrow, ye natural hi hai, ye create karna hai? Kyunki jitna hum stable reh sakenge, utna hum us situation ko achhi tarah se cross kar sakenge. Aur stable rehne ke liye, mujhe us situation mein right kind of thought create karna padega. To humne dekha, jo thought hum create karenge, us quality ki fir hume फीलिंग्स जेनरेट होंगे, वो फिर हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर हमारी पर्सनालिटी बनती जाएगी, एंड देन माई डेस्टिनी। और थॉट्स पर इन्फ्लुएंस किसका होता, क्योंकि आज ये समझ में तो आ गया कि थॉट्स सब कुछ काम कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन थॉट्स को चेंज कैसे करूं? ये तो आदत ही पड़ गई है मुझे नेगेटिव सोचने की। तब वी सॉ लास्ट टाइम कि थॉट्स पर जो चीजों का इफेक्ट होता, वन इज इन्फॉर्मेशन, वन इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड इज बिलीफ सिस्टम। हमारी जीवन में हम किन मान्यताओं के साथ, बिलीफ्स के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, एंड आई फील पर्सनली कि ये तीनों में से, इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ठीक है फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्या फीड करना क्या नहीं फीड करना. पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमने देखा कि हम बैठ कर उसके ऊपर वर्क करें तो वी कैन क्लीन इट ऑफ. लेकिन बिलीफ सिस्टम इज समथिंग दैट बचपन से शुरू होते होते एज आई वॉज ग्रोइंग मेरे अंदर बहुत गहरे डीप रूटेड है एंड समटाइम्स आई डोंट इवन रियलाइज कि मेरे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं.
0: बिलीफ सिस्टम इन द सेंस कि बिलीफ सिस्टम बने कैसे, पूरा एनवायरनमेंट था मेरा क्या ऐसा है चीज.
1: इट कैन बी बिलीफ सिस्टम बनने के लिए भी, इट कुड बी एनवायरनमेंट, इट कुड बी जो हमें सिखाया गया यू नो बचपन से. लेट्स से कि एज अ चाइल्ड मैंने ये देखा कि जब भी मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे डांटा गया है ना, या जब भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे पेरेंट्स के अनुसार राइट नहीं था तो मुझे डांटा गया. अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मैंने देखी कि दिस इज द वे, तो मेरा क्या बिलीव सिस्टम बना कि जब भी कोई कुछ ऐसा करे
0: जो आपको पसंद ना
1: जो
0: हो,
1: आपको राइट ना लगे तो उसको चेंज करने का तरीका उसको डांटो. तो ये मैंने सीखा ना, इट्स नॉट दैट किसी ने मुझे सिखाया बैठकर, लेकिन मैंने वो सिनारियो से मैंने सबको अपने आसपास वो करते हुए मैंने वो बिलीव सिस्टम बनाया, दिस इज द वे इट वर्क्स. तो ये हम बिलीव सिस्टम्स बनाते गए. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम औरों पर ब्लेम कर दें कि जो भी बिलीफ सिस्टम के लिए, हमें फिर अपने जीवन में आज स्टॉप करके चेक करके देखना पड़ेगा कि वो बिलीफ सिस्टम क्या रिजल्ट क्रिएट करता है. यू नो हर एक बिलीफ, यू नो इट्स लाइक अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर बहुत पावरफुल एक सिस्टम है जो हमारे पास है, तो एक कंप्यूटर को चलाने वाला जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम. उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास विंडोज है तो किसी के पास मैक है तो कुछ भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि सारे प्रोग्राम्स जो उस पर चलेंगे
0: वो कैसे चलेंगे.
1: तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, दिस इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा,
0: इसको तो बहुत सारी चीज, अब जैसे यही एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि दर्द के साथ रहना तो नेचुरल है.
1: क्या एब्सोल्युटली ये एक नेचुरल है, आज टेंशन होना तो नेचुरल है, हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं,
0: कभी खुशी कभी गम, यस
1: ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है. विच इज ओके, नो वन इज टू चैलेंज माई बिलीफ सिस्टम, आई हैव टू चैलेंज इट माई सेल्फ. मुझे खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ है एक मान्यता है,
0: लेकिन बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस भी तो बन रहा होगा ना.
1: यस yes.
0: तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है, और उसको मैंने बिलीव, जैसे बचपन में भी मैं देखती आई जो, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव होते गए, अनुभवों को मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया.
1: तो अब सपोज मैंने बचपन में ये सीखा कि जब भी कोई गलती करे तो उसको गुस्सा करो, ठीक है, तो मैंने भी ये पकड़ लिया. या मैंने ये सीखा कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं ना तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब नहीं गुस्सा करते ना
0: तब
1: मैं नहीं पढ़ती, तो मेरा अपना मस्ती चलती रहती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने पढ़ा. तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाने का तरीका क्या है, उनको डांट दो ना वो काम कर देते हैं. नाउ आई टुक दिस बिलीफ सिस्टम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट इन माई लाइफ. तो चाहे वो मेरे ऑफिस में है चाहे वो मेरे घर पर है, आई एम वर्किंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि किसी से काम करवाना उनको डांट दो. काम भी हो रहा है, लेकिन क्या मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका इफेक्ट होता है? क्या मेरे रिश्तों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है? एक तरफ से आई एम सेइंग मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हर एक कह रहा है मुझे खुशी चाहिए, दूसरी तरफ से मैंने बिलीफ सिस्टम बनाया कि गुस्से से काम होता है. हैप्पीनेस एंड एंगर, ये दोनों इकट्ठे कैसे रहेंगे? हाउ विल इट हैपन? आज मुझे रोज काम करना है, रोज लोगों से काम करवाना है, एंड रोज मैं इसी बिलीफ सिस्टम से काम कर रही हूँ कि गुस्से से काम होता है, गुस्से से काम. तो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर गुस्से वाली, दिस एनर्जी गोज आउट एंड देन द सेम एनर्जी कम्स बैक. तो इतना गुस्सा क्रिएट कर के सारा दिन, देन व्हाई एम आई सेइंग कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए?
0: काम तो होता गया ना, तो मैं तभी उसको यूज करूंगी ना जब काम नहीं हो रहा होगा.
1: राइट, तो आप काम करवाने के लिए उसको यूज कर रहे हो ना, लेकिन हमने कभी स्टॉप करके लाइफ में ये चेक करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए जीवन में. ठीक है, सपोज हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि गुस्से से काम होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वंस आई वर्क विद दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए. अब रिजल्ट तो वो वाला नहीं आ रहा ना, रिजल्ट खुशी नहीं आ रही, गुस्सा बार बार करने के बाद खुशी रिजल्ट नहीं हो सकती. तो अगर वो रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन में अपनी जीवन को जीती हूँ. कि इंस्ट्रक्शन कुछ और फीड करते जा रहे हो और रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट करते जा रहे हो. करूं गुस्सा, करूं चिंता और चाहिए खुशी, तो कहां से होगी? नाउ अब गुस्से से काम भी क्यों करवा रहे हैं? चाहिए तो खुशी, लेकिन दूसरा बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है कि काम जितना होता जाएगा
0: खुशी
1: सफलता मिलती जाएगी, जितनी सफलता मिलेगी उतनी खुशी मिलेगी. नीड टू स्टॉप एंड चेक. दीज आर बिलीफ सिस्टम्स.
0: तो ये तो पूरी जिंदगी मेरे बिलीफ सिस्टम पे जुड़ी
1: है. सब कुछ तो बिलीफ सिस्टम पे है. हर दैट्स व्हाई वी सेड इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस क्वालिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम है सब कुछ उस पर बेस्ड है. सारा कुछ उस पर बेस्ड होगा. सारा दिन में हमें पता भी नहीं चलता हम कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ काम करते हैं.
0: तो अभी तो हमें पूरा विंडोज खोलना पड़ेगा. इट्स अ बिग प्रोसेस एक्चुअली.
1: बट द थिंग इज के बिलीफ सिस्टम एंड वन इज द ट्रूथ. इज दिस द ट्रूथ? एंगर इज नेचुरल. ये एक बिलीफ है या ये एक सत्यता है? ये मुझे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ये जो बिलीफ सिस्टम्स, अगर हम एक भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ चले, सी द क्रिटिकल पार्ट क्या है. बिलीफ से थॉट क्रिएट होगा, थॉट से डेस्टिनी क्रिएट हो रही है. अगर मेरा एक भी बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा?
0: मेरी डेस्टिनी पर.
1: मेरी डेस्टिनी पर आएगा. एंड दैट्स व्हाई स्टॉपिंग एंड चेकिंग माय बिलीफ सिस्टम सारा दिन में. अगर आपके साथ कुछ भी बाहर आप जो एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, कहीं आपको अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है, जस्ट हैव टू स्टॉप एंड चेक मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें काम कर रहा है. एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम उसी टाइम दिखाई दे देगा. इमीजिएटली आपको सिर्फ वो इक्वेशन बनाकर रखनी है अपनी लाइफ में. बिलीफ इज इक्वल टू थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी. बीच का भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ो उसको. दैट तो वो ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग. जैसे ही आपके अंदर कोई थॉट क्रिएट हुई, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बैठे हैं, अभी चार लोग आते हैं सामने, एंड वो चार लोग मेरे से नहीं बात करते, वो चार लोग ज्यादा आपके साथ ही बात करने लग जाते हैं. यू नो दे प्रेजिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू एंड आई एम नॉट फीलिंग नाइस. मुझे अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है ना, मुझे अगर फीलिंग के लेवल पर दिखाई देता, देन आई विल गो बैकवर्ड्स. आई विल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा. कौन सी वाली थॉट क्रिएट हो रही है इसके पीछे? क्या थॉट क्रिएट हो रही है? तो थॉट ये क्रिएट हो रही है, इज शी बेटर देन मी? इज इट दैट पीपल लाइक हर मोर? दिस काइंड ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग, और ये थॉट इज मेकिंग मी फील लो. अब इसके पीछे मुझे बिलीफ सिस्टम अपना चेक करना पड़ेगा. कौन से बिलीफ की वजह से मैंने ये थॉट क्रिएट की? मेरा बिलीफ वो था कि जितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे उतना आई एम अ बेटर पर्सन.
0: ओ गॉड,
1: माय बीइंग गुड, वर्दी, नाइस, व्हाटएवर लेबल हमें लेना है.
0: आई थिंक यू सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम.
1: इट इज बेस्ड ऑन लोगों का अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इवैल्यूएट कर सकती. तो वो बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने वो चार लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए देखा, मैंने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इमिजिएटली द थॉट इज देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, शी इज अ बेटर पर्सन, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, पीपल डोंट लाइक मी. अभी उसके बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होगी?
0: और उसके साथ साथ और इसके साथ जुड़ी हुई और बाकी और गंदी गंदी फीलिंग्स भी आ सकती हैं. ये एक्चुअली जेलेसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर.
1: यस, तो जेलेसी किस बेसिस पर स्टार्ट हुई?
0: तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी एंड यू.
1: इट हैज नथिंग.
0: इट हैज एक्चुअली टू डू विद अ बिलीफ सिस्टम विच एक्चुअली अगर मेरे सामने आए तो मुझे कहेगा कि लोगों से क्या फर्क पड़ता है.
1: एब्सोल्युटली.
0: लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैंने फिट किया.
1: हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर हम उसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेक कर लेंगे कि कौन सा बिलीफ मेरा वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर यही बिलीफ वर्क हुआ कि जितना लोग जिसको अप्रिशिएट करते वो ज्यादा अच्छा है. एंड जहाँ ये लोग मेरे पास बात करने नहीं आए, मतलब आई एम नॉट गुड. नाउ दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी. और ये डिस्टर्बेंस के कारण मैं जेलस फील करूंगी, फिर मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी. इट्स नथिंग टू डू विद यू एक्चुअली. आप बहुत जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फील करवाना ना. अब इससे रिस्क ये होगा कि भले आपके सामने नहीं, लेकिन अपने आप को अच्छा फील करने के लिए मैं आपकी बुराइयां देखना शुरू कर दूंगी कि क्या है इसमें. क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पता ये एक्चुअली कैसी है, इनको कुछ मालूम, यू नो, एंड माय इंटेलेक्ट, माय माइंड विल स्टार्ट गोइंग एंड लुकिंग एट,
0: एंड यू नो हियर दिस डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी, यू नो, आप दूर होते जाते हैं ऐसे ही.
1: अब जब मैं ये एनर्जी क्रिएट करूंगी तब एक्चुअली लोग मेरे से परे हटेंगे, एक्चुअली हटेंगे, क्योंकि मैंने कौन सी एनर्जी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, नेगेटिविटी की, जेलेसी की. फिर हो सकता है जब मुझे चांस मिले मैं उन्हीं चार लोगों के पास जाकर इनडायरेक्टली थोड़ी सी आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं, तो मैं उनको बोल दूंगी आपको क्या पता है कानुप्रिया के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम दे विल कम टू मी बिकॉज एंड नाउ आई एम एक्चुअली टेकिंग देम अवे फ्रॉम मी ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम. अब अगर उसी सीन में मैं अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करूं, आई एम हु आई एम, आई नो हु आई एम, आई एम नॉट परफेक्ट, आई नो दैट वेरी वेल कि मेरे अंदर अपनी कमजोरियां हैं, अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन पर मुझे ही काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या किस बेसिस पर मेरे पास आते हैं, दैट डजंट मैटर, ये जर्नी मेरी अपनी है. तो मेरा आपके साथ जो कंपैरिजन करने की यात्रा होगी, दैट विल स्टॉप. हु आई एम इज बेस्ड ऑन हाउ आई नो माई सेल्फ, नॉट बेस्ड ऑन हाउ पीपल appreciate me or say to me. Yes, ये natural है कि अगर आप एक अच्छी energy create करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो benchmark नहीं है. लोगों का आपके पास आना, लोगों का आपके साथ अच्छी तरह से बात करना, इसके पीछे बहुत सारे factors हो सकते हैं. It is definitely not necessary. आज के समय में we can see it. It is possible कि I don't like you और फिर भी मैं आपके पास आऊँ, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँ. एंड अगर आप उस बेसिस पर अपने आप को इवेल्युएट करेंगे तो वो तो बहुत रिस्की है. मुझे अपने आप को खुद इवेल्युएट करना आना चाहिए, बट फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज माई बिलीफ सिस्टम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है और मुझे अपने उस पर काम करना है, अपनी कमजोरियों पर. लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं. हाँ, लोग जो कहते हैं, आई कैन टेक दैट एज अ फीडबैक, बट जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क विद माई सेल्फ. तो एक एक बिलीफ सिस्टम मेरे थॉट पर एंड फिर मेरी डेस्टिनी पर काम करता है. और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं इसमें मेरा क्या है, ये तो इनकी वजह से हुआ. इट इज टोटली
0: This is where the friendship starts, you know, soaring up.
1: वो तो destiny for the year. बिल्कुल. And it's not only about friendship. मैं कितने दर्द से गुजरने वाली हूँ अंदर. मेरे अंदर वे जो inferiority complex हमारे अंदर आ जाता है. क्यों आ जाता है? हम अपने आप को किसी के साथ compare करते हैं. ये भी तो एक belief system है. Competition.
0: कि अगर मैं मुझे अच्छा होने के लिए या मुझे जीतने के लिए किसी को तो हारना ही है. जिंदगी एक हार जीत है.
1: जिंदगी एक हार जीत है. बताओ ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना है.
0: जिंदगी इज लाइफ इज अ वॉर.
1: लाइफ इज अ गेम.
0: यस.
1: लाइफ अगर गेम बोलेंगे, लाइफ इज अ गेम, तो इट ऑलवेज बी के देयर विल बी अ विनर एंड देयर विल ऑलवेज बी अ लूजर. अब अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलूं कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ गेम, इट्स अ वॉर, तो मैं सारा दिन क्या करूंगी औरों के साथ? और जैसे ही अगर मुझे कहीं दिखाई दिया कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कुछ भी कर देना आपसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आपको क्रिटिसाइज करके आपको नीचे गिराना है, मतलब आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज अबाउट मी गोइंग अहेड ऑफ यू. दिस इज अ बिलीव सिस्टम. तो एक बिलीव सिस्टम मेरे पूरे अंदर की सोच को, मेरी फीलिंग को सारा चेंज कर सकता है. एक बार तो रुक कर देखें, वेयर इज द कॉम्पिटिशन.
0: किस बात का कॉम्पिटिशन? कि मेरा जो ये थॉट क्रिएट हुआ है वो किस बिलीफ सिस्टम पे है?
1: स्टॉप करके देखना पड़ेगा. हाँ. क्या इसके पीछे मेरे अंदर

0: कुछ कर रहा हूँ तो यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट, एटलीस्ट अप्रिशिएट.
1: सी नाउ, जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं हमें इमीडिएटली पता चल जाता है, नहीं मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहती थी. या बिलीफ सिस्टम, अगर मैंने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी तो रिटर्न में
0: अच्छा
1: ही करोगे. बिलीफ सिस्टम है
0: तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा करेगा.
1: क्या जरूरी है आज के वो अच्छा करेगा?
0: हाँ, वो किस थॉट प्रोसेस में, और अच्छा,
1: और
0: में
1: अच्छा
0: क्या
1: और
0: होता
1: क्या
0: है?
1: अच्छा और बुरा तो मेरे रेफरेंस पॉइंट से है ना. अच्छा और बुरा आपके रेफरेंस पॉइंट से तो है ही नहीं, आप अपने अनुसार तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो वैसे भी, लेकिन मेरा बेंचमार्क वो
0: ये
1: नहीं
0: बना
1: है.
0: रखा मैंने. ओ यस,
1: मैंने
0: मैं आपसे इतना
1: आपके
0: प्यार करती हूँ, आपने मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आती हूँ, मैं आप जब बीमार हो जाते हो मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ, मैं बीमार हो गई पूछा तक नहीं आप.
1: ना से फिर थॉट कौन से क्रिएट हुई, फीलिंग कौन से क्रिएट
0: हाँ,
1: हुई,
0: गुस्से
1: अगली
0: की.
1: बार मैं नहीं करूंगी आपके लिए. डेस्टिनी, दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग. नेक्स्ट वी चेंज आवर बिलीफ सिस्टम एंड वी से मैं वो करूंगी जो करते हुए
0: मुझे अच्छा
1: मुझे अच्छा
0: लगे.
1: लगता है, नॉट मैं वो करूंगी ताकि इन रिटर्न आप करेंगे. क्योंकि उस बिलीफ सिस्टम से मुझे क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला, हर
0: हाँ, पेन, यस,
1: बहुत पेन.
0: रिजेक्शन, पेन, अननेसेसरीली, यू नो, एंड देन वी स्टार्ट प्रेशराइजिंग द अदर पर्सन आल्सो,
1: एब्सोल्युटली.
0: यू नो, वी स्टार्ट एक्सपेक्ट, यही एक्सपेक्टेशंस आने लगती हैं फिर.
1: मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे
0: हाँ.
1: लिए क्या किया, या मैंने आपके लिए इतना पूरी जीवन मैंने आपके लिए ही किया, आपने क्या किया. तो ये बिलीफ सिस्टम्स की चेकिंग क्यों जरूरी है, बिलीफ सिस्टम्स को धीरे धीरे चेंज करते जाएं और वो वाले बिलीफ सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें जो हमारे जीवन को स्मूथ, इजी एंड हैप्पीनेस हम क्रिएट कर सकते हैं. इफ आई कैन चेंज माय बिलीफ सिस्टम एंड आई कैन से आई विल डू व्हाट आई वांट without expecting anything. Is it possible to lead a
0: Saying
1: life?
0: it is easy.
1: That's एक बार से हाँ, तो doing will come with practice ना,
0: You know,
1: ठीक है ना,
0: see,
1: एक बार
0: again
1: में
0: this
1: नहीं होगा.
0: pain, again this is what I'm saying, कि बार बार हम जो बात कर रहे हैं happiness index, अगर मैंने कुछ किया हुआ है किसी के लिए और वो वापस, या मेरी जब सिचुएशन आई तो उसने वैसे नहीं रिएक्ट किया या नहीं किया, तो वो जो पेन है उसमें मैं उस वक्त तो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर
1: नहीं
0: सकती.
1: कर सकते क्योंकि आपने वो प्रोग्रामिंग अपनी कर ली थी कि मैंने आपके लिए किया
0: तो मुझे आपको
1: तो
0: करना ही है.
1: आपको करना ही है. यू सी, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जिसके लिए मैं अच्छा करूंगी उसको मेरे लिए अच्छा करना ही है. जैसे ही वो अगर नहीं करते हैं या वो उस तरह से नहीं कर, सी एवरी वन इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. हो सकता है आपकी नेचर है कि आप बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब आप डिनर होस्ट करेंगे तो आप इतना कुछ कर देंगे, आप गिफ्ट्स देंगे तो इतने देंगे, आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं. हो सकता है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. मेरे लिए आप घर पर आओगे तो मैं पूछूंगी आप चाय पियोगे क्या, यू विल से लाइक आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो पूरा डिनर आपके लिए बनाया था और आप मुझे पूछ रहे हैं चाय पियोगे कि नहीं पियोगे. यू आर हर्ट कि यू डोंट फील एनीथिंग फॉर
0: Of
1: मी,
0: course, I'm
1: यू आर
0: hurt.
1: नॉट
0: I'm
1: हर्ट.
0: badly hurt. You know, we get hurt.
1: नाउ दिस इज, वी आर टॉकिंग ऑन फिजिकल थिंग्स एंड यही सेम चीज
0: इमोशनल.
1: सटल इमोशनल लेवल पर भी वर्क होती, कि जितना मैं आपके लिए कर रही हूं मेरा ये बिलीफ होता है आप भी उसी प्रपोर्शन में मेरे लिए करेंगे. ये बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है और यहाँ कहीं ना कहीं फिर हम
0: और ये हम जस्टिफाइड, सी वी से दैट दिस इज राइट, इट शुड बी लाइक दिस, बट देन वी हैव टू चेक कि वो मुझे पेन दे रहा है, इट मींस इट्स नॉट राइट.
1: दैट बिलीफ सिस्टम इज डेफिनेटली नॉट राइट. क्योंकि हर एक का पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर एक का सोचना, हर एक का करना, इट्स नॉट दैट दे आर रॉन्ग, वो बैड है, लेकिन उनका राइट एंड रॉन्ग डिफरेंट है. आप जितना करते हो मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि आपने ये बिलीफ बनाया था कि मैं उतनी ही कैपेसिटी में करूंगी, आप हर्ट हुए जब मैं नहीं
0: नहीं
1: करती.
0: किया.
1: अब आप अपने बिलीफ को अगर थोड़ा सा चेंज करो कि मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करते हुए
0: मैंने
1: मुझे
0: एंजॉय
1: अच्छा
0: किया.
1: लगता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग टू मच इन रिटर्न. यहां तक कि लाइक वंस आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ठीक है आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे रिटर्न में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट लाइक डूइंग इट, तो मैं कर रही हूँ. लेकिन होता ऐसे कई बार कि वो अच्छा तो कुछ नहीं किया रिटर्न में, लेकिन किसी ने हो सकता है कि एकदम
0: धोखा दे दिया.
1: कुछ गलत कर दिया, कुछ बहुत, एंड आई फेल्ट हर्ट, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा. एंड देन आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये भी तो एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक्सपेक्ट, हम ये सोच रहे थे, मैं वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, मैं ये सोच रही थी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मेरे को करने दो, मुझे करते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने बुरा कर दिया, तो दैट ऑल्सो यू डिड नॉट मीट अप टू माई
0: एटलीस्ट
1: एक्सपेक्टेशन.
0: आप कुछ मत करते.
1: सो मैंने वो बिलीफ बनाया था कि मैं अच्छा करूंगी आप कुछ मत करना, लेकिन आपने जो मैंने सोचा, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरे ऊपर कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ गया, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन था. तो इफ आई कैन

0: चेंज माई बिलीफ सिस्टम टू मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगता है
1: विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और विदाउट एनी थिंग्स.
0: यू नो हाउ सिंपल माई लाइफ विल बिकम.
1: Oh yes, but right now though I am realizing how much we need to do in the sense that how much we need to understand. You know, it's a major, major shift. Ki one, realizing ki jahan mujhe bura lagne shuru ho, us samay hame ruk jana chahiye. Actually, we should not try to move ahead. We should look at ki kaun sa belief system hai jisne mera ye thought create kiya. Agar aapke paas koi man mein sawal uthta hai, koi baat abhi lag raha hai ki isse judi hui hai, तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत मेजर नया बिलीफ सिस्टम हमने किया है कि जितने भी जो भी नेगेटिविटी मुझे होती है उसके पीछे कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है जिसे चेंज किया जा सकता है. वो चेंज कैसे होगा वो हम अगली कड़ी में जानेंगे. लेकिन अभी सिस्टर शिवानी, आज एक बहुत मेजर हमें अगेन हम कहेंगे एक चाबी है, एक कुंजी है, एक की है टू एक्चुअली सॉल्व द यू नो इट्स की टू हैप्पीनेस बेसिकली. सो लेट्स रिफ्लेक्ट for some time and see how it works with us.
0: Comfortable hokar baithe, we're not doing anything unnatural. Apne aap ko hi dekhne ki koshish karte hain. Bahut sari manyataon ke aadhar par jeevan chalta aa raha hai. Lekin jaise jaise hum jeevan mein apne anubhavon ko dekhte, agar wo anubhav, wo feelings कंफर्टेबल नहीं लगती तो अपनी मान्यताओं को चेक करो. वो बिलीफ्स जो हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन ट्रूथ इज ऑलवेज कंफर्टेबल. ट्रूथ विल ऑलवेज मेक मी फील पीसफुल. समवेयर देयर इज अ कंफ्यूजन. हैप्पीनेस is natural. Happiness is unconditional. Happiness is my creation. Meri khushi meri apni rachna hai. Ye kisi par bhi aadharit nahi hai. Ye mere haath mein hai. Aaj is belief ko lete aur sara din ki yatra par chalte hain. और चेक करते क्या अनुभव होता है. ओम शांति.
1: ओम शांति. जिस तरह से साइलेंस में बैठकर हमने अपने सबकॉन्शियस को, आपने पहले भी कहा था कुछ कुछ बीज बोने की जरूरत है, तो आज साइलेंस में बैठकर अपने साथ इस एक बिलीफ सिस्टम को डालने की कोशिश की है और ये प्रयास संभव रहेगा कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी वैल्यू है. And I can be happy anytime I want. इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि इस श्रृंखला में जो जो हम सीख रहे हैं उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. ओम शांति.

0: पकड़ना पाए।
1: ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँ मेरे।
2: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। जिंदगी का ये सफर तय करते, कई रोल्स निभाते, कई बार एक सवाल बार बार उठता है कि कौन हूं मैं। उस सवाल को हम दबाकर आगे बढ़ जाते हैं और हर रोल को फिर निभाने लगते हैं। लेकिन हमने जो ये सफर तय किया है उसमें इस सवाल को सामने लाए हैं और इस पूरे सफर में ये तलाशने की कोशिश की है। कई जवाब हमें मिले भी हैं, लेकिन हम उस पड़ाव पर पहुंचे थे कि किस तरह से जो हमारी ईगोज हैं वो कई बिहेवियर्स जो हमारे होते हैं उनको बताती है कि वो अड़चन बन सकती है और कैसे हम सुप्त अवस्था में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जागना क्यों जरूरी है और जागा कैसे जा सकता है, यही आज तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी इस कड़ी में। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने अपने बारे में जानने की कोशिश की है, जाना है कि ईगो क्या है। जिसे हम मानते थे कि ईगो है वो कहीं ना कहीं अंदर के आंतरिक भय से जुड़ा था, अटैचमेंट से जुड़ा था, और अब ये भी जान गए हैं कि हम सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं जागना जरूरी है।
1: जागना टू रियलिटी।
0: यस,
1: से अवेकन टू व्हाट? अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस। अभी तक सोए हुए थे, मतलब सोचेंगे क्या सोए हुए थे, कि जो सत्य है उसकी तरफ जैसे मुंह उससे परे हटा हुआ था, आंखें बंद थी। तो जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, नहीं कहते कि तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब ज्ञान का नेत्र खुल गया। जो असलियत है, जो सत्यता है, जो अंदर एक प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में जागृता हो गई। तो नाउ क्योंकि अब प्रोसेस पता चल गया है, अब उसको फॉलो करना शायद थोड़ा सा ईजी हो जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, जैसा आपने ये कहा कि किसके बारे में जागना है, क्योंकि हमें कई बार कहा जाता था, मुझे भी अगर मैं अपने आप को देखूं तो कहा जाता है कि खुद के बारे में अवेयर हो जाओ, अपने बारे में सोचो, मेडिटेट करो। ये सारे सवाल आते तो थे, सब कुछ तो था, लेकिन करना कैसे है? आज जब ये प्रोसेस समझ में आया है कि ये होता है हमारे अंदर, ना, किस तरह से हमारा थॉट जो है वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है, किस तरह से ईगो दो तरह की हो सकती है। हम हर्ट होने को, सेंसिटिविटी को अपनी, हम अपनी स्ट्रेंथ मानते थे, वो कहां, किस तरह से हमारे भय का एक रूप होती
1: और
0: है।
1: कोई ना कोई एक अटैचमेंट है,
0: हाँ,
1: जो पकड़ी हुई है, वी हैव टू लेट गो ऑफ दैट।
0: लेकिन ये जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जो सुप्त अवस्था है, कि हम नहीं जानते कि भाई क्या है हम, उसको जागृत करने का प्रोसेस अब क्या है?
1: वी विल हैव टू गो थ्रू अ फ्यू स्टेप्स। मतलब ये सब कुछ जैसे आपने कहा हमें समझ में भी आ गया, फिर भी सारा दिन में करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा। एंड वो समय देना मतलब क्या, आप देखो सवेरे से उठते हैं, इट बिगिन्स विद न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इस तरफ से रेडियो ऑन है, चौथी तरफ सब तैयार हो रहे हैं, शोर मच रहा है। एंड एक्चुअली जो सारा दिन हमारा बीतता है वो बहुत शोर में बीतता है। शोर नॉट नेसेसरली बाहर, लेकिन शोर अंदर। यू नो, इफ यू जस्ट एक मिनट के लिए डिटैच होकर सबसे पहले अपने मन की स्थिति को देखें, तो सारा दिन साइलेंस बहुत कम है। सारा दिन मन में ये करना है, ये करना है, जल्दी करो, यहाँ हुआ कि नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो ये करना था। द स्पीड ऑफ द माइंड इज वेरी फास्ट। अगर इतनी ज्यादा स्पीड होगी तो फिर रास्ते में कौन आ रहा है जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा। यू नो, इफ यू आर गोइंग एट 120 तो यू विल नॉट रियली सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द जर्नी।
0: बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस।
1: इनसाइड में
0: अंदर ही इतनी तेज स्पीड पे चल रहे हैं,
1: बहुत ज्यादा तेज है ना। आप देखो संकल्पों की गति इज अबाउट 25-30 थॉट्स पर मिनट, और आजकल हम बहुत ज्यादा नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं है, वी आर स्लाइटली हायर स्पीड। आप देखो सड़क पर भी गाड़ी चलाने की एक स्पीड रखी जाती है ना, आज कितनी पुलिस खड़ी होती है कि जैसे ही आपने उस स्पीड को क्रॉस किया स्टॉप। क्यों? जहां स्पीड बढ़ेगी वहां कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। मन की स्पीड इस टाइम कैसी है?
0: बहुत फास्ट है,
1: बहुत फास्ट है। एक संकल्प उसके बाद तुरंत दूसरा, मतलब देयर इज नो टाइम, इतना फास्ट है। और जितनी स्पीड ज्यादा है तो समझ लीजिए कि क्वालिटी ठीक नहीं है। आप देखो जब हम परेशान होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसके बाद तो मन की स्पीड कैसे चलती है? क्यों कहा, अपने को ऐसा समझता है, सबके सामने बोल दिया, मेरा कुछ नहीं है क्या, मेरी सेल्फ, इट्स फास्ट। अगर किसी के लिए अच्छा सोचना है आप उसकी स्पीड देखिए, इट इज स्लो। तो पॉजिटिव थॉट्स विल ऑलवेज बी स्लोअर एंड नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज फास्टर। तो अगर बहुत स्पीड ज्यादा है इसका मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अब अवेयरनेस चाहिए, तो पहली बात तो इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा नॉइज सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, इन्फॉर्मेशन, नॉइज, टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, यू नो, जस्ट फिलिंग इट इन. जितना भरते जाएंगे उतना
0: हम खाली होते
1: इट विल गो वेरी फास्ट.
0: इनफैक्ट मैंने हमने ये भी देखा है कि जैसे ही हम खाली होते हैं हम भागते हैं किसी नॉइज की तरफ.
1: हाँ, बिकॉज हम खाली रहना नहीं चाहते. हमें अभ्यास ही नहीं रहा कि 2 मिनट अगर बैठ जाए. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन स्टार्ट इज बीच बीच में कुछ क्षण निकाल के जस्ट बी क्वाइट, एंड नॉट बी क्वाइट जस्ट वर्बली. ना शांत रहना मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुख से चुप रहना, लेकिन आंतरिक.
0: तो क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं उस टाइम?
1: सप्रेस नहीं करना और ना थॉट को बंद करना है, लेकिन देखना है इस समय. लेट्स डू इट राइट नाउ. जो सभी देख भी रहे हैं इस टाइम प्रोग्राम को, इस क्षण हम कर सकते हैं. जो कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं, 1 सेकंड के लिए जो कर रहे हैं वो रुक जाइए, जस्ट स्टॉप. एंड अभी सिर्फ डिटैच होकर देखिए मेरे मन में इस समय कौन सा संकल्प चल रहा. एंड वेरी ऑफन वी विल फाइंड कि वो बहुत रेलेवेंट नहीं होगा इस टाइम. वो या तो पास्ट में होगा, कुछ थोड़ी देर पहले किसी से बात की होगी, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, या वो आने वाले टाइम के बारे में प्लान कर रहा होगा, अभी ये करना है. वेरी रेयरली वी आर इन द नाउ. इस क्षण का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा रहे होंगे. बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, मन लेकिन पूरा पूरा उस बात को, जब हम जो बात अभी सुन रहे हैं उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको बहुत ज्यादा अप्लाई करना कहाँ पॉसिबल है. तो वो तभी होगा जब माइंड थोड़ा सा साइलेंट होगा. उस ब्लॉटिंग पेपर को क्लीन रखना पड़ेगा. वो ब्लॉटिंग पेपर इतना सैचुरेटेड रहता है कि उस पर कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रह जाती कि कुछ नया भरा जाए. तो इसका एक जेन्युइन अभ्यास अगर हम करना शुरू करें कि बीच बीच में जस्ट बी क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ मत अभ्यास करेंगे, कुछ नहीं सोच रहे, बट एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहे ऐसा नहीं होगा, लेकिन करना क्या है, सिर्फ देखना है कि मेरा मन क्या कर रहा है. जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं, बीच बीच में जो ऑफिस में सीनियर होगा वो एक राउंड मार के देखेगा कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं. इसी तरह बीच बीच में चेक करना मन क्या कर रहा है, तो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके चेक कर लेगा ठीक काम कर रहा है, नहीं तो थोड़ा सा उसको प्यार से, अभी आपको इस टाइम ये नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना है, ब्रिंग इट बैक.
0: ओके,
1: यू हैव टू टॉक टू योर माइंड, इट्स योर माइंड. अगर हम दूसरे को जाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप ऑफिस में एक हेड है, आप अपने ऑफिस में चक्कर लगा के सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी आपको ये नहीं करना ये करना, आप किससे बात कर रहे हैं? आप उनके मन से ही तो बात कर रहे हैं ना. कान सुनेगा, मन ही तो उस चीज को परसीव करेगा. सबके मन से बात कर सकते हैं, तो अपने मन से क्यों नहीं बात कर सकते हैं?
0: अब अपने मन से, मेरे मन से, मैं, आई द सोल इज टॉकिंग.
1: या इट्स लाइक दिस, आई एम सिटिंग हियर एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पे बात की थी, तो मुझे कोई और चीज के बारे में पता चला. अब मैं यहाँ कुछ और बात कर रही हूँ आपसे और सोच कुछ और रही हूँ, तो मैं अपने साथ और आपके साथ धोखा
0: है.
1: यू नो, बिकॉज मेरा मन यहाँ होना चाहिए इस टाइम, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. मैं आराम से आपसे अभी बात करते करते कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो जो रिलेशनशिप बनना चाहिए वो नहीं होगा. थोड़ी देर के बाद कोई पूछता है, आर यू रियली लिसनिंग? ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग, एंड ऊपर ऊपर से वील गो यस यस आई एम लिसनिंग बट नो. एंड फिर हम सुनेंगे लेकिन उसको ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, जाकर कर कुछ और देंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइंड, मोस्ट ऑफ द टाइम द माइंड वॉज डूइंग समथिंग एल्स. ऑफिस में आप देखो कितनी बार होता है, मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया था ना, आपने सुना नहीं था उस टाइम. सुना तो था, कानों ने सुना था,
0: रजिस्टर नहीं हुआ.
1: दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. आई एम हियरिंग, कान सुन रहे हैं, लिसनिंग
0: समझ रहे.
1: तो दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर बीच बीच में हम चेक कर लें कि मन कहाँ है.
0: अच्छा, हम जब चेक कर रहे हैं तो जो विचार, जो संकल्प उसी वक्त चल रहा है उसी को देखें, या पीछे जो गुजरा वक्त थोड़ा सा है
1: अभी चेक करें, अभी क्या चल रहा है? कुछ और चल रहा है. अपने आप से पूछे क्या इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये तो बीती हुई वाली बात है, अभी कुछ और करना है. इसके बारे में कब सोचे? शाम को सोचेंगे घर जाने के बाद. ठीक है, शाम को हम इसके बारे में सोचेंगे, फुल स्टॉप. इट्स जस्ट दैट वी नेवर टॉक्ड टू आवर माइंड. अगर हमने किसी के साथ बात ही नहीं की, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कैसे चलना है, तो वो अपने आप चल रहे हैं
0: हिसाब से जो उसे समझ में.
1: अगर ऑफिस में हम नहीं बताएंगे कि क्या कब करना है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे. तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बीच बीच में स्टॉप करके चेक करना है. दैट इज व्हाट वी से, जस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम. और थोड़े टाइम के बाद क्या है, मन को पता चल जाएगा काम करने का तरीका कैसा है, एक सिस्टम बन जाएगा, और फिर वो मन उसी सिस्टम के अनुसार चलेगा. लेकिन थोड़ा सा उसके साथ, एंड दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप, डिटैच, चेक. क्या सोच रहे थे? अच्छा, ये वाली बात तो कल के लिए है ना, ये तो कल की मीटिंग में करना है, अभी ये. ओके, लिविंग इन द प्रेजेंट. किसी ने कुछ कह दिया, वो सुनकर घर पहुंच गए. ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर आ गए. घर में बच्चों के साथ है इस टाइम, वाइफ के साथ है. जितना थोड़ा समय मिलता है, इट शुड बी क्वालिटी टाइम. यू नो, वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम यही है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अवेलेबल नहीं है. मेंटली अभी भी मन सोच रहा है, क्यों ऐसा डांटा, इतनी सी तो बात थी, या वट एवर. टेल द माइंड, वो ऑफिस की बात है ना, और शायद उन्होंने जो किया वो ठीक ही किया था. जो भी किया था, कल सोचेंगे ऑफिस जाने के बाद, एंड इट विल लिसन. गिव इट वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन. माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना. अगर हम मन को सिर्फ ये कहेंगे अभी नहीं सोचना, पर ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कल सुबह 9 बजे आना,
0: तब सोचेंगे.
1: यस, एंड इट इज सो परफेक्ट. वो कल सुबह 9 बजे आपको थॉट आ जाएगा.
0: अच्छा, इट लाइक हियर यू.
1: या इट इज लिसनिंग. व्हाट इज इट? इट इज प्रोग्रामिंग. एक इंस्ट्रक्शन फीड हो रही है. कंप्यूटर में भी रिमाइंडर फीड करते हैं ना, टुमोरो मॉर्निंग 9 o'clock रिमाइंडर, और वो एग्जैक्ट 9 o'clock आ जाएगा. सेम टू द माइंड.
0: गुड, इट्स लाइक गुड. एक्चुअली वी कैन ऑलवेज ट्राई इट आउट. लेट्स ट्राई
1: करेंगे, वो प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी, एंड इट विल हैपन. एक बार अगर सपोज उसने आपकी बात नहीं मानी, फिर आ गया, आपको कहा ना कल सुबह 9 बजे, फिर आ गया, क्या कहा था आपको कल सुबह 9 बजे, बस थोड़ा सा, फिर इट्स डन.
0: ओके, that's nice.
1: It's very simple. It's very simple.
0: So okay.
1: Yeah, the thought should be, ये मेरी काम की चीज़ है ही नहीं. So stop. Why am I wasting my energy? Full stop. फिर आएगा thought, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है. It's wastage of energy. Stop. दो बार, तीन बार, finished. नहीं, अगर नहीं stop किया,
0: तो आता रहेगा और वो convert करेगा फिर destiny में.
1: सिर्फ एक नहीं आएगा, इतनी chain आती है फिर उस thoughts के. इसलिए जहां अगर बीच बीच में रुकते हैं ना, तो थोड़ी सी भी quality अगर दूसरी side पर जा रही है, तो हम उसको जल्दी से
0: वापस ले आते
1: हैं. तो पूरा दिन वेस्ट नहीं होता. कई बार हम अपनी चेकिंग करते हैं लेकिन दिन के एंड पे, बट बाय देन द डे इज ओवर.
0: सो लाइक इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इट्स एक्चुअली, यू नो, लाइक इट्स अ टिप.
1: बिल्कुल. सो सिंपल है, बीच बीच में थोड़ा सा क्वाइट हो जाए और अपने मन को देखे. दूसरी चीज जो बहुत सिंपल हमें करनी पड़ेगी, अटैचमेंट्स जो हमने देखी थी, लेट गो. लेट गो करना पड़ेगा.
0: नो, लेट गो टू द अटैचमेंट, बेसिकली
1: टू द अटैचमेंट.
0: सो दैट इज लाइक वी हैव टू गो डाउन, यू नो, लाइक जो हमने पूरा प्रोसेस देखा कि जहां हमने ईगो की बात की, वो ऐसा बिहेवियर जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारे ईगो को जनरेट कर रहा है. बिकॉज अभी ये मिथ भी तो जेल लेके जी रहे थे हम कि सेंसिटिविटी होना या हर्ट होना तो
1: Absolutely.
0: हमारी स्ट्रेंथ है, यू नो, लाइक, और हम अपनी ईगो को कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे थे. तो वो जैसे रियलाइज हुआ, देन वी गो बैक टू द प्रोसेस.
1: सो वी हैव टू लेट गो. इवन ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं, लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे अभी भी, वही चीज यूज करेंगे, वही फोन यूज करेंगे, लेकिन डिटैच्ड. ये मेरा है, यूज करने के लिए आया है, एक दिन ये फिनिश हो जाएगा. बट लेट गो, डोंट होल्ड ऑन टू इट. और बहुत चीजें जो हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर, उसको लेट गो करना
0: कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, या पास्ट में जो था वो इतना अच्छा था, वो कहाँ चला गया पास्ट.
1: दैट्स
0: वेरी डिफिकल्ट.
1: अच्छा या नेगेटिव भी.
0: हाँ,
1: नेगेटिव को भी पकड़ के रखते हैं.
0: बहुत खराब था, मैंने कैसे जिंदगी गुजारी.
1: उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किसी ने कुछ एक सेंटेंस कह दिया, उसको कितने साल पकड़ के रख सकते हैं. हु विल लेट इट गो. कौन थे आप, खुद ही देखो. आप किसी को भी इस समय याद कर लीजिए जिसका आपका कोई बिटर मेमोरी आपके अंदर बैठी हुई है.
0: वो लिंगर है, अभी भी लिंगर है, इसका मतलब
1: अभी भी
0: कभी भी चाहो रिवाइव कर सकती हूँ.
1: और जितनी बार आप उसको रिवाइव करेंगे, आप अपने आप को कष्ट देते हैं.
0: बिकॉज वी गो थ्रू द सेम पेन
1: थॉट फीलिंग एटीट्यूड एवरीथिंग
0: एंड दैट केमिकल थिंग आई स्टिल रिमेम्बर दैट यू नो बिकॉज पेन इज समथिंग Which people at times do start enjoying.
1: और आपको पता है कई बार जब शरीर को वो केमिकल नहीं मिला होता बहुत देर के लिए और कोई आ भी नहीं रहा आसपास जो मुझे हर्ट कर रहा है आई जस्ट पिकअप समथिंग फ्रॉम द पास्ट
0: पुराना कुछ नहीं तभी मैं स्टोर करता रहता हूँ करती रहती हूँ
1: इतना सारा अक्यूमुलेटेड है कि फ्रेश टॉक अगर नहीं भी मिला आज सारा दिन में कि किसी ने कुछ आकर नहीं ऐसा कहा जिससे मुझे बुरा लगे तो पास्ट का कितना सारा पड़ा कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए Just one second is needed. आपने वो incident उठाया and that's it.
0: You get
1: that same pain and everything all over again. And then you're like, हाँ मेरा तो भाग्य ही ऐसा है वो जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन सेल्फ सिंपथी है फिर वो शुरू हो गई
0: We want to change them.
1: Yeah.
0: And especially, you know, when we fall in love, when we care for the other person, or maybe, you know, like now too, I feel that all our belief systems have been actually wrong maybe, you know, like standing on wrong aspects. It's like we feel that we are in love with that person has to become what we expect.
1: Want him to be. तो हम सारा दिन जिसको हम कहते हैं हम दूसरों की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते हैं आपको ऐसा करना चाहिए आपको ऐसे उठना चाहिए ऐसे बैठना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए ऐसे काम करना चाहिए वी आर राइटिंग द स्क्रिप्ट जितना हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे यहाँ प्रेशर है क्योंकि आप वैसे बनेंगे नहीं जैसे मैं चाहती हूँ तो वो सारा दिन मेरी इनर जो कॉन्शियसनेस उसको डिस्टर्ब कर रहा है फिर क्यों नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं आप देखो करके देखना एक दिन का ये एक्सपेरिमेंट है डोंट कंट्रोल एनीबडी इन द होल डे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जैसे हैं इट डजंट मीन कि हम किसी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप डिसिप्लिन करेंगे उसके बाद छुट्टी देंगे आप बहुत ज्यादा उसको पकड़कर फोर्सफुली अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं आप इंस्ट्रक्शन देंगे इंस्पिरेशन देंगे दैट्स ऑल उसके बाद वो जैसा है यू विल हैव टू एक्सेप्ट उससे आपकी इनर लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी नहीं तो इट इज अ टर्मोइल बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है तो बी क्वाइट बीच बीच में लेट गो जो भी अटैचमेंट्स है एंड लेट पीपल बी वो जो है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं ये एक थॉट पे ये जो है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट लेकिन इफ आई से नहीं आपको ऐसा होना चाहिए आपको ऐसा होना चाहिए आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट तो इट इज एक्सेप्टेंस तो ये एक्सेप्टेंस भी हमारी इनर स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख सकती है जैसे ही हम ये तीन चीजें करना शुरू कर देंगे ना क्योंकि लेट गो और लेट बी जब कर लिया इनर जो सारा जो सूत मोत मूंझा हुआ है ना वो सारा स्ट्रेटन आउट हो जाएगा हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद यहाँ एकदम क्लैरिटी आने लगेगी और जैसे ही वो आने लगेगी फिर जो आपने कहा ना अंदर की आवाज वो सुनाई देने लगेगी अंदर की आवाज मतलब जब दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे दूसरों को कंट्रोल करना बंद करेंगे तब तो कहीं अपना कोई प्रोसेस दिखाई देना शुरू कर रहा होगा एंड इसको हम कहते हैं इंट्यूशन अपनी सोल्यूशंस खुद से अभी पहले क्या था इधर इतना कंफ्यूजन था तो दूसरों से पूछना पड़ता था आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए
0: हाँ, बिल्कुल
1: लेकिन सोल्यूशन तो मेरे पास है आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं है तो लेकिन यहाँ जब ये सब हट जाएगा तो क्लीन Now I can see my own solution. एकदम स्पष्ट दिखाई देगा तो we will be able to start listening. अंदर वो जो हमारी intuition है वो हमारे से बात करना शुरू कर देती है And then we really wake up. क्योंकि we are awake कि क्या हो रहा है मतलब फिर क्या हो जाएगा जो हमने शुरू में कहा कि सब कुछ करते हुए लोगों से बात करते हुए एक awareness क्या चल रहा है अंदर अभी क्या होता है हम गुस्सा कर देते हैं रिएक्ट कर देते हैं हर्ट हो जाते हैं फिर जाके कहीं लगता है शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन जब एक अवेयरनेस में चलेंगे गलती होगी अभी भी बात करते करते मुझे आप पे गुस्सा आ जाए लेकिन करते करते दे विल बी एन अवेयरनेस ओके नो दिस इज रॉन्ग स्टॉप चेक चेंज फास्ट
0: जैसे कहा जाता था कि भाई गुस्सा आ रहा हो तो आप 10 तक गिन लीजिए या पानी पी लीजिए लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल वो हो ही नहीं पाता था
1: वो नहीं
0: पाता था कि पूरा प्रोसेस नहीं होगा
1: और फिर वो एक बाह्य पुरुषार्थ था ना आप बाहर से पानी पी रहे थे बट द आइडिया वॉज यही कि गिव योर सेल्फ लिटिल गैप टू सी लेकिन अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा क्लीन अंदर से चल रहे हैं आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ नहीं गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है स्टॉप राइट लेन पर उसको लेके जाना है and it will go. So you wake up. You wake up to the process that's going on inside. Aap continuously aware ho jayenge. Jaise kisi ko criticize kiya, turant awareness hogi. Kya dar tha mujhe? Kis liye maine inko criticize kiya? Achha, mujhe ye dar tha.
0: To process shuru ho jayega andar talashne ka.
1: Mujhe kis baat ka dar tha? Nahi, chhod diya. तो फिर क्रिटिसिज्म बंद. तो बाह्य लेवल से हम नहीं कर सकते क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज वो नहीं होगा अनलेस माई दैट इनर प्रोसेस गेट सिंप्लीफाइड. तो अब अवेयरनेस आएगी, अब आउटर बिहेवियर और इनर प्रोसेस
0: के बीच का जो
1: हार्मनी. अभी क्या हो रहा था, इनर प्रोसेस चल रहा था लेकिन इतना ऊपर कंफ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था. आउटर बिहेवियर में वो सिर्फ आता जाता था. क्वाइट हो गए, साइलेंट कर दिया, अब दिखाई देता है. एंड देन वी वेक अप. एंड सबसे पहली चीज जब हम वेक अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी हैव अ चॉइस एट एवरी स्टेप. वी हैव अ चॉइस कि हमें कैसे बिहेव करना, हमें क्या बोलना है. एंड ये इतनी डीप रियलाइजेशन होती है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली कोई हैबिट्स एक्चुअली होती ही नहीं है. हम जो कहते हैं ना जी ये तो मेरी आदत है, हमें एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं. आपने इस तरह से क्यों बोला जी, मेरी आवाज ही ऐसी है, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा, ये तो मेरी आदत है. आदत मतलब ऑटोमेटिक. अब हम ऑटोमेटिक नहीं है, आदत क्या होगा, कोई चॉइस नहीं है. लेकिन अब तो हमारे पास चॉइस है, हर स्टेप पे चॉइस है. तो देयर विल बी नो हैबिट्स, एवरी टाइम यू विल बी
0: अ न्यू पर्सन.
1: न्यू पर्सन,
0: वाओ, दैट्स नाइस एक्चुअली.
1: Even you will not know कि आपका क्या response अब. You will be surprised at your own response. आप खुद हैरान होंगे कि इन्होंने इतना कुछ कह दिया, अच्छा मैंने गुस्सा नहीं किया. How come? पहले तो मैं गुस्सा कर देती थी, but you didn't realize that time you were sleeping. अब आप उठ गए हैं. तो आदतें खत्म हो जाएंगी and I'll be a new person every time. So that's a very important thing. तो ये चार बातें भी अगर हम ठीक से कर लें, let go, let be quiet, start listening. Wake up and know yourself. जो हमने पहले भी देखा कि सबसे important अपने आप को जानना कि ये कौन कर रहा है, ये किसका process. Quiet होना मतलब यही संकल्प, मैं कौन जो ये कर रहा, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, उसने इन्होंने आकर ऐसा कुछ डाल सकते. Changed.

0: but every step we will be able to do with them.
1: There's a whole process actually, but then अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो कही गई कि क्वाइट शांति एक चुप रहकर सुनने की जरूरत है,
0: listening. अंदर से चुप. कई बार हम बाहर बहुत शोर में हो सकते हैं लेकिन अंदर चुप. You know, so, नहीं तो लोग बोलेंगे जी क्या करे.
1: हाँ,
0: हमेशा ही आवाज है चारों तरफ, बट इट्स नॉट दैट नॉइज, इट्स इंटरनल.
1: इंटरनली यू नो लाइक हम और वो सुनने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. एंड देन यू सेड कि डिटैचमेंट, लेट गो. एंड थर्ड इज लेट बी, लेट पीपल द वे दे आर. सो इन तीन स्टेप्स
0: बहुत लाइफ इजी हो जाएगी इफ वी लेट पीपल बी द वे दे आर. सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर आ रही है.
1: बिल्कुल,
0: बहुत ज्यादा.
1: ये किस तरह से इसको एहसास करना है, ये पूरा प्रोसेस है. बट देन इट डज टेक टाइम एक्चुअली शिवानी.
0: नो, इट्स जस्ट बिगिन. यू बिगिन, आप शुरू कीजिए कोई भी चीज. आपने शुरू कर दी, इट्स बिगन. इट्स लाइक हमें उठने में तो टाइम लगेगा लेकिन जब नींद खुली, इट्स बिगन.
1: लेकिन मुझे दिन भर में बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ये करना है.
0: थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ेगा. थोड़े टाइम के बाद इट्स नेचुरल. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे पानी पीना. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे आराम करना है. करना ही है, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा. इसी तरह मुझे मन को बीच बीच में आराम देना है. दैट इज बी क्वाइट, नहीं तो वो थक जाएगा. थोड़े टाइम के बाद नेचुरल.
1: बिल्कुल, ये जो हमने पूरी एक यात्रा तय की है और जागने तक के प्रोसेस पर आए हैं, ये एक बात समझ में आती है कि ये जिंदगी की शुरुआत में ही अगर समझ ले जाए तो हम इतना लंबा सोते हुए वक्त नहीं गुजार देंगे. तो शिवानी बहुत अच्छा लगा ये जो पूरी हमारी बातचीत रही, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू.
1: आज हमने ये समझा कि हम जाग सकते हैं, इतनी आसानी से जागा जा सकता है. सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ क्षणों की चुप्पी बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है. सुनना अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर चल रहा है, क्या हम कह रहे हैं या जो भी हमारे थॉट आ रहे हैं. और उसके बाद लेट द वे पीपल आर, लेट बी, जिस तरह से हैं उन्हें वैसे ही रहने दें और हम भी लेट गो कर दें. यानी जिसके साथ हम अटैच हो जाते हैं उन्हें हम जाने दें. शायद एक बात एक और कहना चाहेंगे सिस्टर शिवानी कि कहा जाता है कि जो अपना है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा.
0: They will come back.
1: और जो कभी था नहीं आपका उसको आप कितना भी रोक लीजिए.
0: तो ये सब फिलोसफिकली हमें पता होता है लेकिन प्रैक्टिकल में
1: बहुत मुश्किल आती है. तो चलिए, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे, जानेंगे कुछ अपने बारे में. लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भक्ति काल की अद्भुत कवित्री थी मीरा, कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा, जिसका दर्द कोई न जान सका। अपार सौंदर्य की स्वामिनी कवित्री मीरा, जो अपने भजन अपने ही कोकिल कंठ से गाकर अपने सांवरिया को रिझाती रही। लोक लाज खोकर और कुल मर्यादा को भुलाकर भक्तों के साथ झूम झूम कर नाचती रही। पग घुंघरू बांध और ताली बजा बजा कर वे अपने जोगी को बुलाती रहीं।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

सचमुच मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई थी। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की दासी के रूप में साकार कर लिया। प्रभु चरणों के निकट वे भाव विभोर होकर नाचती थी। माया मोह नाते रिश्तों से दूर वे कृष्णमय हो गई थी। उनके तो सिर्फ गिरधर गोपाल थे, दूसरा कोई नहीं था। अपार सौंदर्य की धनी और सुख वैभव में रही मीरा ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। न जाने कितने कष्ट और अत्याचार सहकर भी वे गोविंद के गुण गाती रहीं।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: लोक कहे मीरा भई बावरी, भ्रम दूनी ने खाग्यो, कोई कहे रंग लाग्यो। लोग कहते थे कि मीरा पागल हो गई थी, यही भ्रम दुनिया को खा गया। कोई कहता है ये तो प्रेम लग गया है, अर्थात मीरा का भक्ति भाव कृष्ण में आत्मसात हो गया। आकाश हो या धरती, फूल हो या पत्ते, या फिर हो बादल, हर जगह हर शय में मीरा को सिर्फ कृष्ण ही नजर आते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायिका थी वीनस तरकसवार। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्ण, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा यार आना।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा।
2: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर अपोप फिरकत। त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध।
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: शिवाजी की तलवार है, लाबनी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, वेयर इट सेज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर। इट सेज वी ईच डिसाइड वेदर टू मेक आवर सेल्फ लर्न इट और इग्नोर इट, कंपैशनेट और क्रूवल, जेनरस और माइजरली। नो वन फोर्सेस अस, नो वन डिसाइड्स फॉर अस, नो वन ड्रैग्स अस अलोंग वन पाथ और द अदर।
2: ब्यूटिफुल।
1: वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर।
2: परफेक्ट है ना, कितना सुंदर लाइन है।
1: फिर वो बच्चों बचपन से बातें कहां गई, इसको गलत कंपनी मिल गई, दोस्तों ने खराब कर दिया, इसका माहौल ऐसा था, ये बच्चे की को उस टाइम पे हमारे पास ये नहीं था, हम वहां जाके रहे, स्कूल ऐसा मिल गया, तो क्या वो मैंने चूज किया।
2: परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। ये जो कोटेशन है वो ये कह रहे हैं, वी अलोन डिसाइड व्हाट वी आर।
1: तो व्हाट वी डू वही आर होंगे ना।
2: व्हाट वी डू वही तो हम आर कैसे हो गए।
1: व्हाट वी डू दैट वी आर,
2: व्हाट वी आर दैट वी डू।
1: ओके, लेकिन जो जो हरकतें हैं,
2: देखो व्हाट वी डू व्हाट वी आर, एक है जो हम करते हैं व्हाट वी डू, एंड एक है हु वी आर, जो हम हैं। तो जो हम करते हैं उससे हम नहीं बनते हैं, जो हम हैं वैसा हम करते हैं।
1: तो जो हम हैं सिस्टर वो माहौल पे डिपेंड नहीं करते,
2: माहौल।
1: तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्कूल के गलत मिला, कंपनी गलत मिली, इसीलिए जो हम बात करते हैं उससे हटके ये बोल रहा है।
2: हर आत्मा एक बंडल ऑफ संस्कार है, कुछ संस्कार हमें मिलते हैं
1: जी,
2: राइट। जैसे इस प्रेजेंट बर्थ में भी अगर ले ले, कुछ संस्कार तो हम आत्मा पास्ट बर्थ से ही लेकर आए हैं, भले वी चोज दैट बट वी हैवंट चोजन इट नाउ, वी चोज इट बिफोर, राइट। तो कुछ चीजें हमें लगता है मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये संस्कार तो मेरे पास ऑलरेडी है। सो सम संस्कार आत्मा पास्ट बर्थ से लेकर आ रही है, कुछ संस्कार मुझ आत्मा को फैमिली से मिल रहा है, जो भी एक बहुत बड़ा पावरफुल फैक्टर है, पेरेंटल इन्फ्लुएंस या फैमिली में जिनके साथ हम रहते हैं, किसी की आदतें किसी के संस्कार हमें मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। कुछ संस्कार पास्ट बर्थ से लाए, कुछ संस्कार परिवार से मिले, कुछ संस्कार वातावरण से बने, राइट, एनवायरमेंट, जो आपने कहा जैसा संग वैसा रंग। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सेट ऑफ संस्कार है वो संस्कार जो मैं आत्मा अपनी विल पावर से क्रिएट करती हूँ। सेम पेरेंट्स सेम वातावरण में भी दो आत्माएं एक अलग तरह से संस्कार क्रिएट करेंगे।
1: विल पावर में पिछले जन्म का लिए क्या है।
2: विल पावर तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, बीइंग शक्ति पावर।
1: तो किसी में कम किसी में ज्यादा क्यों है?
2: किसी में कम किसी में ज्यादा क्योंकि कौन कम यूज कर रहा है कौन ज्यादा, किसी में कम शांति किसी में ज्यादा, किसी में कम गुस्सा किसी में ज्यादा।
1: कम यूज करना मेरे हाथ में।
2: आप गुस्से को यूज करते हैं या शांति को यूज करते हो किसके हाथ में।
1: वो तो मेरे नेचर पे है ना।
2: हाँ, पर वो किसके यूज
1: करने। मेरे पिछले जन्म के संस्कारों से मेरा नेचर बना, एक पैटर्न बना,
2: और आज आप जो चूज करेंगे वो आप बन जाएंगे। इसीलिए उसने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि आप कंपैशनेट हैं या क्रूअल हैं, आप जेनरस हैं मतलब उदारचित हैं या कंजूस हैं, ये सब कुछ आपकी चॉइस है, कोई आपको फोर्सफुली ये बना नहीं सकता, ना इस रास्ते ना उस रास्ते। वो भी लाइन बहुत ब्यूटीफुल थी, ना कोई गलत रास्ते आपको लेकर जा सकता है, ना कोई अच्छे रास्ते भी आपको लेकर नहीं जा सकता।
1: वी ईच डिसाइड वेदर टू मेक आवरसेल्फ लर्न इट और इग्नोर इट।
2: हाँ, मतलब ज्ञानी बनना है, ज्ञानी मतलब जो ज्ञान है चारों तरफ उस ज्ञान को यूज करना है, ज्ञानी बनना है लर्नेड और इग्नोरेंट अज्ञान।
1: तो मैं तो यूजुअली बड़ों से पूछता हूँ कि डिसीजन, तो व्हाट अबाउट दैट?
2: हम लोगों से राय ले सकते हैं ना, डिसीजन फाइनली किसका होता है? हमारा अपना होता है। संस्कार, आज एक परिस्थिति आई, आपको उदारचित होकर उस परिस्थिति में कुछ करना है या कंजूस होना है, किसकी चॉइस है? कंपैशनेट या हेट्रेड, किसी के लिए रहम करके उसको फॉरगिव करके कुछ करना है या उससे जीवन भर नफरत करनी है, ये किसकी चॉइस है? इतना ज्ञान जो मिला, उस ज्ञान को जीवन में यूज करना है या अभी भी अज्ञानवश चलना है, किसकी चॉइस है सर? ये हर स्टेप पे मुझ आत्मा की अपनी चॉइस है। एंड मुझे तो लास्ट लाइन बहुत ब्यूटीफुल लगी, न इस रास्ते न उस रास्ते, कोई जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता। गलत रास्ते भी कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा सकता, अच्छे रास्ते भी कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा सकता, वो भी हर आत्मा की अपनी चॉइस होगी।
1: स्कूल में हम लोग कभी कॉफी पीने जाते थे फ्रेंड्स, मतलब हम लोग 7 आदमी हैं तो 6 के 6 सिगरेट पीते थे, मैं अकेला नहीं पीता था। लेकिन वो रास्ते पे वो लोग नहीं लेके गए, असर नहीं पड़ा? शंकर रंग तो आपने ही कहा था,
2: आपने कहा 7 लोग थे, 5 साल, तो 5 साल भी तो वही संघ था, 5 साल भी वही संघ था, 5 साल भी वो लोग वही रोज कर रहे थे, कॉलेज में पहुंच गए। अब तो करने में कुछ गलत नहीं है, स्कूल हो गया पूरा, सब हो गया, अब मुझ आत्मा ने चूज किया वो करना। संघ में तो वो चीज पहले भी थी, अब वो आत्मा ये भी हो सकती है, अब ऐसा भी सीन आ सकता है कि उसके बाद अगले 5 साल आप 7 लोगों के साथ बैठे जिसमें से कोई नहीं पीता।
1: हाँ।
2: ये भी तो हो सकता ना,
1: ऐसा भी हो सकता।
2: पहले 5 साल आप 7 लोगों के साथ बैठे जिसमें सब ले रहे हैं, तो भी आपने नहीं लिया, वो भी आपकी चॉइस थी। उसके बाद आपने लेना शुरू किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 साल आप 7 लोगों के साथ बैठे जिसमें से कोई नहीं ले रहा था, आप अकेले। ये हुआ
1: मेरे भाई बहन रिश्तेदार फैमिली ब्रदर कोई नहीं पीता था, मैं अकेला बाहर जाके पी गया था।
2: सिंपल है ना, तो फिर वो संघ का रंग क्यों नहीं लगा?
1: हाँ, उनको क्यों नहीं लगा?
2: उनको नहीं,
1: नहीं वो संघ का रंग मुझे नहीं लगा और उनको मेरा नहीं लगा ना, मेरे छोटे भाई वगैरह।
2: अपने को ही देखे कि अगर हम ब्लेम मोड में चलेंगे, विक्टिम मोड में चलेंगे, तो फिर तो हमारे पास एक्सक्यूजेस देने के लिए बहुत सारे हैं, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। लेकिन फिर कितने लोग हमारे आसपास हैं जिनके बहुत ब्यूटीफुल संस्कार्स हैं, फिर उनकी वजह से हमें वो वाला रंग क्यों नहीं लगता? इन्फ्लुएंसेस सारे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वाइब्रेशन सारी है, एनर्जी सारी है हमारे चारों तरफ, ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव है, हमारे चारों तरफ प्योर पॉजिटिव एनर्जी भी है। फाइनली मैं आत्मा चूज करती हूँ, हर स्टेप पर, हर रोज, हर क्षण, सब लोगों के बीच रहते हुए। हो सकता है आपके आसपास कोई गुस्सा नहीं करता था, फिर भी आप करते थे। हो सकता है आज आपके चारों तरफ लोग गलत तरह से बात कर रहे हैं, फिर भी आप शांत रहेंगे। दोनों हो सकता है ना, ये सिर्फ फिजिकल आदत के लिए नहीं है कि सिर्फ सिगरेट या खाना पीना या ऐसा कुछ, लेकिन व्हाट अबाउट सूक्ष्म संस्कार भी?
1: वो भी तो हो सकता है। तो मैंने नोट किया सिस्टर, अगर माँ बाप एक्सट्रीम गुस्से वाले हैं तो उनकी औलाद में से मैंने किसी को शांत नहीं देखा कभी।
2: बिकॉज पेरेंटल इन्फ्लुएंस, मात पिता का संस्कार बच्चे पर माँ के गर्भ में पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वी कैच वाइब्रेशंस ऑफ पीपल।

0: शांत स्वरूप आत्मा जो बहुत मतलब उसने इतने साल एक्सट्रीम साइलेंस में, सपोज कोई सन्यासी आत्मा हो जिसने तपस्या की है, इतने साल मौन में रहे हैं, साइलेंस में रहे हैं, वो आत्मा इस परिवार में आ जाए जिसमें घर में लोग एक्सट्रीम गुस्से वाले हैं, ठीक है। अब उस गुस्से का संस्कार का वाइब्रेशन इस आत्मा के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा अपनी शांति की स्थिति में एक्सट्रीमली पावरफुल है। अगर इस घर में एक ऐसी आत्मा आती है जिसके अंदर पीसफुल भी है लेकिन गुस्से का भी संस्कार है, दोनों संस्कार है, मॉडरेट जिसको हम कहेंगे, तो इस संस्कार का जो गुस्से का परिवार का है उसका इन्फ्लुएंस पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी वो जो बच्चा आया है वो उसकी चॉइस है, अगर बचपन में नहीं तो थोड़े बड़े होने के बाद, कि हु डू आई वॉन्ट टू बी। व्हेन अ चाइल्ड इज वेरी स्मॉल इट्स नॉट यूजिंग इट्स ओन चॉइस, इट्स ओनली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। इसलिए पेरेंट्स के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आत्मा गर्भ में है एंड जब आत्मा बड़ी हो रही है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, वो आत्मा अपनी चॉइसेस नहीं यूज करती बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज ही नहीं है अभी। उस समय उसकी इन्फ्लुएंस होने की स्थिति बहुत ज्यादा है, गेट्स वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बट वट एवर। सी, एक बच्चा क्या होता है, आप बच्चे को बोलो ये दिन है, वो सीख जाता है ये दिन है,
1: सोबर बोलते हैं फैन है, ये लाइट है,
0: लेकिन
1: ये
0: जो आप सिखाएंगे वही वो सीखेगा।
1: अगर मैं फैन को बोलूंगा ये बेड है, बेड है, बेड है,
0: तो वो बेड ही सीखेगा, बोलेगा हाँ वो बेड ही सीखेगा। मतलब दैट इज द एज ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड ना, That is the age of becoming what you are taught. You become that.
1: But later on you change, no?
0: Later on you change.
1: कभी कभी ऐसा होता है कि I don't like what my parents taught.
0: Beautiful. This is it.
1: है ना?
0: See? This is it. Later on you have the power.
1: Because I see कि मेरे daddy ने ऐसा बोला था, एक पत्थर मारे तो तुम 10 मारो, लेकिन उनका मैंने ये देखा इनके losses हो गए, या business इनका ये हो गया और कोई बात नहीं करता है, इतना इनका बुरा हाल है। ये देखकर आत्मा सीख सकती है ना?
0: नहीं भी देखती ना, अगर सपोज खुद को आत्मा को कंफर्टेबल नहीं लगता।
1: अच्छा।
0: लेट्स से स्थूल संस्कार, कि आपके घर में संस्कार है तीखा खाने का सपोज, तो डैडी ने भी तीखा खाया, मम्मी ने भी तीखा खाया, बचपन से आपको तीखा खिलाया भी, लेकिन हो सकता है कि थोड़े साल में आपको लगे मुझे ये पसंद नहीं है।
1: आई लव दैट वर्ड आपने जो बोला ना, कोई आत्मा अनकंफर्टेबल फील करती
0: है। अनकंफर्टेबल
1: मेरे घर में मेरे बच्चे जो नॉन वेजिटेरियन है उनका बच्चा खा नहीं सकता है नॉन वेज, वो अंडा उसको बोलते खा खा खा चिड़ते थूक देता है,
0: राइट right.
1: उसको छुपा के राइस में थूक देता है।
0: पेरेंटल संस्कार स्ट्रांगली नॉन वेज खा रहे, ठीक है। आत्मा आई, अब देखो इस केस में क्या है, आत्मा जब गर्भ में थी तो भी उसको नॉन वेज का टेस्ट मिला है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मदर वो ही खा रही है। लेकिन इस केस में वो आत्मा का जो पूर्व जन्म का संस्कार है वो बड़ा स्ट्रांगली वेजिटेरियन होगा। सपोज वो आत्मा पूर्व जन्म में कोई ऐसी फैमिली से हो जो मतलब अपने घर में ना आने दे, देखे भी ना, सूंघे भी ना, जो बहुत जिसको हम कहते हैं
1: लव्स एनिमल्स, प्यार करता है बड़े बड़े, जिससे आप और मैं डर जाए उसके जाके हाथ मुंह में डालता है।
0: इसी में तो समझ में आता है ना पास्ट बर्थ संस्कार क्या है, वो कौन सी आत्मा है। यू नो व्हेन वी दिस लाइन नो दिस पॉइंट ऑफ नॉलेज की ये आत्मा कौन सी है, क्या संस्कार लेकर आई है, ये आत्मा को एक्सेप्ट करने में बहुत इजी कर देता है।
1: बहुत सीखने को मिला ये वर्ड अनकंफर्टेबल।
0: अनकंफर्टेबल
1: सो मेनी टाइम्स आई फील कि ये सब तो कर रहे हैं बट आई एम अनकंफर्टेबल इन डूइंग द सेम थिंग।
0: आप ये देखो ना, अभी वो तो छोटा बच्चा है ना, सपोज 1-2 साल का है, ठीक है। हम जैसे अभी बड़े हैं, सपोज हमने इस जीवन में कभी नॉनवेज ना खाया हो एंड हमें अंदर से इनग्रेन्ड उस बात से जैसे कि वी जस्ट नॉट कम्फर्टेबल विद इट, बिल्कुल भी, ठीक है। हम स्मेल भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, जहां कोई खा रहा है वहां हम बैठ नहीं सकते, सपोज ये हमारी जीवन है 60-70 साल, ठीक है। सपोज व्हेन वी आर एट द एज ऑफ 70 किसी ने हमें जबरदस्ती खिलाया, या जैसे आपने कहा मिक्स करके छुपा के उसको खिलाया, माइंड और बॉडी रिजेक्ट कर देगा उस चीज को। अब जब हम 70 साल के हैं और हमें किसी ने खिलाया तो हमें नॉलेज है, हमने रिजेक्ट कर दिया, 1 साल में वो आत्मा ने शरीर छोड़ा और उसने नया कॉस्ट्यूम लिया। अब वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कि उसके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या कंफर्टेबल है, क्या नहीं कंफर्टेबल है, लेकिन दे

0: देखो वो पास्ट का वेजिटेरियन संस्कार इतना पावरफुल है कि वो उसको इतनी यंग एज में रिजेक्ट कर देता है. अब इसका फ्यूचर इस आत्मा का ही दोनों तरफ जा सकता है. वी हैव सीन बुद्ध केसेस. अगर ये आत्मा बहुत पावरफुल है, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है, ठीक है, तो ये आत्मा विल स्टिक टू इट्स वेजिटेरियनिज्म फॉर अ लाइफ टाइम. विल स्टिक टू इट, कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे. दिस डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द सोल. इसीलिए बीइंग शक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये जीवन में कभी नहीं खाएगी. अगर ये आत्मा थोड़ी सी इन्फ्लुएंस होने वाली है तो फिर धीरे धीरे धीरे ये वातावरण नहीं खाता है, इतना कमजोर, इतनी अच्छी चीज नहीं खा. यू नो दिस इज हाउ संकर रंग
1: वो हड्डी तोड़ते हैं, तू तो घास फूस वाला कमजोर.
0: हाँ, लेकिन ऐसे सुनने के बाद भी इट विल ऑल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ दैट सोल एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल. हम चूज करेंगे.
1: नहीं सिस्टर, बट इफेक्ट कैसे करता है देखो, वो बता शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, ऐसी ऐसी लाइनें हम स्कूल में सुनते थे.
0: लाइनें सुनना, लाइनें पढ़ना, लेकिन लाइन कितनी इफेक्ट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा की चॉइस. इफेक्ट किसको करता है? आपकी बात मुझ पर इफेक्ट करे मींस यू आर मोर पावरफुल देन मी, आई गेट इन्फ्लुएंस्ड.
1: एक एग्जांपल, हम लोग शूटिंग में इधर उधर फ्रेंड्स बैठते थे तो सब मिलके किसी जो बाहर जहां वहां नहीं रहता था एक्टर या जो भी आदमी उसके बारे में गॉसिप गॉसिप गॉसिप जैसा क्या बोलते जाते थे.
0: right.
1: जैसे वो आया
0: बहुत मीठा मीठा
1: सब मीठा मीठा. हाँ. तो बिगिनिंग में मुझे अजीब लगा, लेटर ऑन फिर मैं करते करते 30-40 साल में साथ मैं भी करने लगा, इतना ज्यादा करने लगा कि एंजॉय करने लगा. लेकिन उसके बाद सडनली आज कोई बैठ के इस तरह करे तो मैं उठ जाता हूँ. मतलब कान में दर्द होता, जो आपने शब्द अनकंफर्टेबल यूज किया ना, हाँ. वो मुझे इतना अच्छा लगा. नाउ आई फील वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस.
0: दिस इज इट.
1: आई नाउ वेरी फील वेरी अनकंफर्टेबल कि कोई सिगरेट पी रहा है मेरे पास.
0: हाँ. जबकि खुद ली थी ना.
1: तो आई वॉज अ स्मोकर.
0: हाँ, तो खुद लिया ना. एक समय था जब नहीं लिया, फिर प्रभाव में आकर चूज किया, फिर लिया, लेकिन वो हमारा संस्कार नहीं था. तो जब छूटा तो अब उसको बिल्कुल नहीं ले.
1: गॉसिप वाला मेरा नहीं था, यू मीन टू से संस्कार.
0: आपने कहा ना पहले नहीं था.
1: हाँ, स्कूल में कॉलेज में नहीं था.
0: दिस इज ऑल, ये हमारी प्रोग्रामिंग है सारी. इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, इतना मजा आता है इसको देखने के.
1: स्कूल कॉलेज में कोई बोलता तो मैं बोले किसी के पीछे क्यों बोल रहे हैं हम लोग. हाँ. मैं मम्मी को भाई को बहनों को भी बोलता, व्हाई डू वी टॉक लाइक दैट.
0: राइट.
1: लेकिन फिर बाद में खुद बोलने लग गया.
0: तो संस्कार नहीं था, संस्कार बना, फिर संस्कार छूटा. तीनों फेजेस किसके हैं? मुझात्मक है. संस्कार गॉसिप का नहीं था, संस्कार गॉसिप का बना, संस्कार गॉसिप का छूटा. ये मेरे संस्कार थे. पहले आपने कहा घर में लोग गॉसिप करते थे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, संकर रंग नहीं पड़ा. फिर शूटिंग में या फ्रेंड्स में बैठे वो लोग करते थे, मैं भी करने लगा. मतलब मैं प्रभावित होकर मैंने भी अपना वो संस्कार बना लिया. आज वो स्टेज है कि आसपास अभी भी तो लोग करेंगे ही ना, वो तो जो जहां बैठे हैं लोग करेंगे, लेकिन हमने अपने संस्कार को चेंज कर दिया. See, that is why that line is so beautiful, na? Only and only and only you are responsible for who you are. Only. इसको अगर हम पकड़ लें, this one line will make us powerful. क्योंकि आज तक हमने बहुत easily कहा क्या करे क्या करे, घर पे ऐसे था, माहौल ऐसे था, टीवी ऐसा है, मीडिया ऐसा है, बातें ऐसी है. हैं, there is no denying. 20th
1: century है, ये century है, modern life है, दुनिया है.
0: अब हमें ये चेक करना है, जैसे जिस जैसे आपने अपने ग्रैंड चाइल्ड का बताया, आप सिर्फ आने वाले समय में इस आत्मा की जर्नी को देखेगा कि ये आत्मा किस डायरेक्शन में कैसे जाती है. और इसीलिए पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यू नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अ रिलेशनशिप कि हमने पैदा किया, खिलाया, बेस्ट स्कूल में भेजा, बेस्ट करियर किया, अच्छे घर में शादी कर दी. दैट्स वॉट वी लुक एट एज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमने इसको क्या प्रॉपर्टी दी, हमने क्या इनहेरिटेंस अपने बच्चों को दी, हमने बेस्ट नॉलेज, बेस्ट जो बेस्ट चीज एक पेरेंट अपने बच्चे को देता है वो है उसके संस्कार. बेस्ट
1: संस्कार हम कैसे देंगे?
0: हम संस्कार नहीं देंगे बच्चे को.
1: संस्कार तो लेके आया वो.
0: संस्कार लेकर आया, लेकिन अब हम

0: उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं।
1: हमारे हम चाहे उसको हिला भी दे तो उसके ओरिजिनल संस्कार हम कैसे हिला।
0: ओरिजिनल संस्कार तो किसी आत्मा के भी नहीं हिला सकते।
1: आत्मा के संस्कार नहीं बोलो, जो पास्ट लाइफ में जो
0: पास्ट लाइफ के संस्कार हिलते हैं ना। देखो जैसे आपने कहा अभी आपका ग्रैंड चाइल्ड इस समय वो वेजिटेरियन है, मतलब पैदा होते ही वो नॉनवेज को रिजेक्ट कर रहा है। ये हम स्थूल चीज देख रहे हैं। इसी इक्वेशन को संस्कार पे भी अप्लाई करना, जो आदत वो संस्कार। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 3-4 साल ये डिसाइड करेंगे कि वो आत्मा किस डायरेक्शन में जाएगी। वी सीन बोथ द केसेस। कुछ बच्चे हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए कि उनके पेरेंट्स कितना भी बोले, डांटे, फोर्स करे, फ्रेंड्स मजाक उड़ाए, नहीं मतलब नहीं, हम नहीं लेंगे उसको। बट देन दिस सोल हैज टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर दैट। एंड कुछ बच्चे वो लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने खिलाना शुरू कर दिया, मिला के खिलाना शुरू कर दिया, टेस्ट बैठ गया, फिर फ्रेंड्स के साथ गए, पार्टी में गए, तो उनका संस्कार जो वो लेकर आए थे वो वेजिटेरियन का था, लेकिन वातावरण के प्रभाव से दूसरा संस्कार उन्होंने अक्वायर किया। दिस इज ऑल अ जर्नी ऑफ अक्वायरिंग संस्कार।
1: कि जब बच्चे को बहुत भूख लगती है तो उसकी मेड क्या करती है, फिश वगैरह चावल में छुपा के, क्योंकि भूख लगी है वो खा तो लेता है, लेकिन बाद में बहुत गुस्सा आता है, उसको चिड़चिड़ा हो जाता है।
0: सी वी हैव गिवन द सोल समथिंग दैट ही इज नॉट कम्फर्टेबल विद।
1: पौने दो साल का बच्चा इतना उसको इफेक्ट होता है,
0: वाइब्रेशन
1: एंग्री,
0: वाइब्रेशन
1: लड़ने लगता है, लोग बोलते ये क्यों चिड़ रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने बोला इसलिए हो रहा है।
0: अगर वो पेरेंट्स आज रियलाइज करे ये आत्मा के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है, उसको ये नहीं दो, उसको बहुत, वो बच्चा बता ही नहीं सकता कि उसको क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है अंदर। जिस चीज के लिए बच्चा कंफर्टेबल नहीं है उस बच्चे को वो नहीं देना है। इफ इट्स नॉट, सी सर्टेन थिंग्स विच आर गुड फॉर द चाइल्ड, दिस इज वेयर कम्स द पावर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इज द पावर टू डिसर्न व्हाट इज गुड व्हाट इज नॉट, what is right, what is wrong, what is true, what is false. आज हम क्या कहेंगे, नहीं मतलब नॉर्मल इवन नॉन वेज के लिए नहीं खिलाना ही है, इसमें हेल्थ है, इसमें हम परख नहीं रहे कि क्या ये चीज पहली बात आत्मा के लिए शरीर के लिए अच्छी है। अच्छा हम खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बच्चा नहीं खाता है तो इसमें तो उसका फायदा ही है ना।
1: क्यों?
0: वी नो कि वेजिटेरियन का मन और बुद्धि और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: आपको मालूम है, वो लोग तो कहते हैं कि ये मच्छी खाएगा तो इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी।
0: परखने की शक्ति इसीलिए चाहिए ना, परखने की शक्ति। इट्स लाइक एक आत्मा आपके घर एक ब्यूटीफुल संस्कार लेकर आई है। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे यहीं पे आई मेट अ चाइल्ड, वो छोटा 3-4 महीने का, उसकी आंखों में दिखाई देता था कि कितनी प्योर और कितनी पावरफुल आत्मा है। एंड बस एक मिनट बाद आई मेट हर फादर, वो 3 महीने का बच्चा, मैंने उसको एक ही लाइन कही, मैं कहा आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके घर एक बहुत पावरफुल आत्मा आई है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रास्ते लेकर जाते हैं। पेरेंट्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम देखते हैं कुछ बच्चे छोटे, बहुत छोटे, 3-4 साल के सेंटर पर आ जाते हैं, आश्रम पे, ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि वो आत्मा का पूर्व जन्म का संस्कार है, इस जन्म का नहीं होता वो संस्कार। पूर्व जन्म में अगर संस्कार आत्मा का मेडिटेशन करने का था, स्पिरिचुअलिटी का था, तो वो किसी के साथ आ जाती थी। मी आई वेंट टू द सेंटर एज अ चाइल्ड, बट व्हेन आई वेंट टू द सेंटर एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग दैट टाइम। I went to the center as a child with my grandmother. मैं नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, ये एज में मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता था वहां जाने के बाद। 20 years बीच में नहीं गए, मतलब आप स्वे हो जाते हैं ना दूसरी तरफ, कि किसी ने कहा नहीं जाना, ये नहीं, ऐसे नहीं, तुम अभी पढ़ो, तुम सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, इस रास्ते नहीं जाना, ये नहीं करना, हम बह जाते हैं दूसरी तरफ, दैट्स माई वीकनेस, तो उस तरफ बह गए। लेकिन फिर वो संस्कार तो था ही ना नीचे, एंड अगेन यू कम बैक टू दिस साइड, बट देन आई फील आई लॉस्ट 20 years इन बिटवीन। सो दिस इज द जर्नी ऑफ एवरी सोल। जो आत्मा के लिए कंफर्टेबल है और अगर वो चीज अच्छी है उस आत्मा को करने देना चाहिए, वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट सोल।
1: बट ये 20 years लॉस्ट नहीं है, इसका भी आपको शायद एक्सपीरियंस होके देखना था।
0: ऑफकोर्स अब तो हम कहते हैं कि हर चीज ही एक्यूरेट हो रही है जो हो रही है, बट वॉट वी फील इज कि अगर आपके घर के बच्चे अपने पूर्व जन्म से कोई संस्कार लेकर आए हैं जिसके अंदर उनके लिए वो सही है, वो प्योरिटी है, वो सात्विकता है, कोई भी एक चीज ऐसी है, आप अपने प्रेजेंट संस्कार या वातावरण को देखकर उस बच्चे को उसकी सात्विकता से दूर नहीं करना चाहिए।
1: उस बच्चे को उसकी सात्विकता से दूर नहीं करना चाहिए। और पूर्व जन्म के संस्कार पे एक छोटा मेडिटेशन करें।
0: श्योर, सिट बैक। लेट्स सिट बैक कंफर्टेबली। अपने आप को देखें और अपने आसपास सबको देखें। हर आत्मा एक नेटवर्क ऑफ संस्कार है। कितने सारे संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, माता पिता से मिले संस्कार, परिवार से मिले संस्कार, वातावरण से मिले, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुझ आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार। आई द पावरफुल सोल, शक्तिशाली आत्मा, मैं चूज करती हूं मेरे लिए क्या सही है, क्या कंफर्टेबल है, क्या सत्य है। चाहे संघ परिवार मुझे कुछ भी मिला हो, मेरे लिए क्या राइट है। मेरा हर संस्कार मेरी चॉइस से बनता है। आई चूज हु आई एम एंड देन आई चूज व्हाट आई डू। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हु आई एम टुडे एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई वांट टू बी टुमारो। ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
2: We each decide whether to make ourselves learned or ignorant, compassionate or cruel. No one forces us. No one decides for us. No one drags us along one path or the other. We are responsible for what we are. Each soul is a bundle of five types of sanskars. First type is our past birth recordings, which we carry. Second is sanskars which we get from the family. Third is sanskars created due to the influence of environment. Fourth is sanskars created from our own will power. And fifth is original sanskars of the soul. We are influenced by vibrations of family, friends and society. We are surrounded by some negative sanskars and also a lot of pure positive sanskars. Finally, it is our choice which sanskar to create for ourselves. Soul in the womb of the mother and as a child is largely influenced by vibrations and habits of parents. It is the responsibility of parents to radiate pure and peaceful vibrations. If the child is carrying pure and sattvic sanskars from their past life, we should not force them to change. They will be uncomfortable.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 9955960.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार। चांगला स्वभाव हा गणितातल्या शून्यासारखा असतो। चांगला स्वभाव हा गणितातल्या शून्यासारखा असतो। ज्याच्या सोबत असतो त्याची किंमत नेहमीच जास्त असते। मी शुभांगी

0: है।
1: पुन्या चा आवाज तुम चा हृदया चा साथी, पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका

0: किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बालियों के बगैर कान कितने सूने सूने लगते हैं।
1: यहाँ भी आप पहुँचे?
0: आया हूँ, अभी पहुँचा नहीं।
1: पहुँचे हुए मालूम होते हो।
0: आपकी दुआ है।
1: काम करते हो यहाँ?
0: कहीं क्या सेवा करूँ?
1: हाथ चाहिए?
0: जरूर, ऐसा हाथ पेश करता हूँ कि आपके गले से लग कर हाथ नहीं जीत लगे।
2: ये देखिए,
0: इस मखमल से गोरे गले में सच्चे मोती का सफेद हार, ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी से धुले हुए आसमान में आकाश गंगा लहरा रही है। 10,000, शायद दाम आपके लिए कुछ ज्यादा है।
1: बहुत कम, कोई महंगी सी चीज दिखाइए।
0: जरूर, ये कैसा लगता है आपको? मालूम होता है दूध की झील है, उस पर सोने के पत्तों में लाल कमल खिले हैं। 25,000।
1: बस इतनी हल्की नहीं, कोई भारी सी चीज पेश कीजिए।
0: और ये देखिए, झील मिलाती हुई किरने सिमट कर आपके गले से लिपट देंगे।
3: ये हीरे आपके आंखों से बाजी लेना चाहते थे, मगर लगता है लजा गए बेचारे। और ठीक भी है, कहा है ना, लाज ही औरत का जेवर है। 1,00,000।
1: बात हुई ना कुछ? हीरो से बढ़कर तो आपकी जुबान है।
3: अब मेरी जुबान से बढ़कर आप हैं।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

दीवाना दीवाने को समझाने दो।

हसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो।

इंद्र आरती को उसके माजी से निकालना चाहता था, लेकिन वो मुड़ मुड़कर अंधी आंखों से अंधेरा माजी टटोलती थी। इंद्र की आवाज में उसे शून्यता ही शून्यता सुनाई देती थी।

0: फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे अपनी दुम में बांधे
1: अपनी दुम में बांधे।
0: अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया साला में तो साहब बन गया
1: अटेंशन
0: साला में तो साहब बन गया साहब बन के कैसा तन गया

गंगूतली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा।

0: झूम गाऊं।
1: आकाश पर दमकते हुए उस प्रकाश पुंज में भी ईश्वर का अंश है और धरती की धूल के कणकण में भी वही समाया है। सच तो ये है कि हम प्राणियों को भी बस उसी शक्ति का साया है।